साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद, हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या देवी?
1: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
0: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,

सुप्रभातम, मैं वास्तु कृष्ण आपका स्वागतम सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं आजकल, और इस पूरे हफ्ते, इस पूरी सीरीज में हम श्रीमद् भागवत गीता की कुछ पावरफुल बातें ही करने वाले हैं। आपका भी कोई ना कोई तजुर्बा इस महान ग्रंथ से जरूर रहा होगा। ये लाइफ मैनेजमेंट बुक भी है दोस्तों, सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है या धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि जिसको सिर्फ पढ़ने से, कई बार ऐसा होता है ना हमारी हिंदू सभ्यता में या हमारे सनातन में, परिवार डर जाते हैं जैसे ही बच्चा गीता पढ़ने बैठे या धार्मिक थोड़ा होने लगे तो उनको लगता है ये तो संत बन जाएगा, ये जीवन से इसका मोह भंग हो जाएगा और ये बाबा बन जाएगा, महाराज बन जाएगा। ऐसा होता है ना, आपने भी सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी पारिवारिक सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है वो सब गीता पढ़ते थे। गीता आपको सिखाती है, गीता आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गीता बताती है जीवन की सच्चाई क्या है। गीता आपको तनाव से बाहर निकालती है। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन या तनाव, मानसिक रोग है, उसे गीता पढ़ाइए, गीता सुनाइए, कितनी तेजी से उसका ये रोग ठीक होगा आप इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। आर्ट ऑफ लाइफ असली यही है।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम, मैं वास्तु कृष्णा आपका स्वागत करता हूं और सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। भगवान गीता में हमें बताते हैं लोभ कभी खत्म नहीं होता। जी हां, इंसान जितना ज्यादा लालच करता है उतना ही अंदर से खाली होता चला जाता है। जीवन का उपयोग करना सीखे। संतोष सबसे बड़ी दौलत है, धन है। जिसको संतोष है ना, उसका जीवन सबसे सुंदर है। अगर आप लोभ और लालच के रूप में पड़े रहेंगे, उसके चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आप दौड़ते ही रहेंगे और कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। भगवान हमको कह रहे हैं कि लोभ को त्याग दो, लालच को त्याग दो। लाइफ में थोड़ा सा ग्रीडी होना ठीक है। ग्रीडी होने का अर्थ है कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको जीवन से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो आप ही को मारने होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट तो आप ही को लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा लालच के वशीभूत हो जाएं, लालच में पड़े रहें और जिंदगी को नर्क के समान बना लें। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और हमें ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान हमसे क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हमको वो।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम, मैं वास्तु कृष्ण आपका स्वागत करता हूं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों, आजकल हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता पुराण के बारे में। गीता हमको सिखाती है जीवन जीने की कला। अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तनाव है तो गीता पढ़िए, गीता सुनिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप किसी ऐसे दोराहे पर, किसी मोड़ पर खड़े हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या लें, तो गीता का कोई भी चैप्टर खोलिए, कोई भी, कहीं से भी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यकीन मानिए, अब से हजारों हजारों साल पहले भगवान ने अर्जुन को जो बताया, अर्जुन के स्थान पर आप खुद को खड़ा कीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अर्जुन को नहीं बताया, उन्होंने हमें भी बताया है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई भी समस्या है, गीता पढ़िए दोस्तों।

0: करो।
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम, ये मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान का नाम जपना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नाम जपने से सब कुछ कट नहीं जाता, कर्म का बंधन कट नहीं जाता। भगवान गीता में अर्जुन को जो सिखा रहे हैं वो कर्मों का बंधन भी बता रहे हैं, जीवन क्या है, कर्म क्या है, सब बता रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, भ्रांतियों को छोड़िए, किसी भी ऐसी बातों के चक्कर में मत पड़िए कि जिसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं। आपको गीता जरूर पढ़नी चाहिए, हमारे वेद पुराणों का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य ने एक बार गीता पढ़ ली उसको समझ आ जाता है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और उसको अपने जीवन का, अपनी लाइफ का पर्पस भी समझ आ जाता है और उसको कभी डिप्रेशन या तनाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि भगवान जो गीता में बता रहे हैं ना, वो मुझे बता रहे हैं। हर इंसान को ऐसे ही सोचना चाहिए कि भगवान जो ये बोल रहे हैं ये मुझे बोल रहे हैं, अर्जुन के साथ में, अर्जुन के पीछे हम खड़े हैं, अर्जुन के साथ में हम खड़े हैं और अब भगवान कुछ कह रहे हैं। क्या अलौकिक अनुभूति आपको होगी मित्र,

भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि डर कमजोरी पैदा करता है, डर कमजोरी पैदा करता है। हे अर्जुन, कायरता मत अपनाओ। जब अर्जुन डर गए ना ऐसे घर के परिवार के जनों को सामने देखकर, तो अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो मेरे अपने हैं, चाचा है, ताऊ है, ये सब तो मेरे अपने घर परिवार के लोग हैं, तो मैं इनके ऊपर हथियार नहीं चला सकता। तब भगवान ने कहा है कि अगर ये अपने हैं तो फिर सामने क्यों खड़े हैं। तब भगवान बोलते हैं कि डर कमजोरी पैदा करता है, क्लेव्यम माम स्मम गमा पार्थ, हे अर्जुन कायरता मत अपनाओ। डर इंसान की शक्ति को छीन कर देता है, छीन लेता है, साहस ही आगे बढ़ाता है। इसीलिए भगवान जो अर्जुन को समझाते हैं उसको हमें अपने आप को सामने खड़ा करके ये मानना चाहिए। तो जीवन में जब भी कभी आपको डर लगे, आप किसी भी परिस्थिति से घबराएं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, संकट कितना भी भारी क्यों ना हो, कभी भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं पार्थ, तुम्हारे रूप में मैं ही सब कुछ करता हूं। आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं कर रहा हूं, मुझसे ऐसा हो गया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ मैं करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। तो जब भी कभी डर लगे, ये अपने मन में बल को आप बढ़ाइए कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं, और आपको जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर मिलेगा, भरोसा मिलेगा, और आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि भगवान आपके साथ है। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम सुप्रभात। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा 9639012111 पर। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अगले एक और खास कार्यक्रम में

ऐसे ही कुछ अलौकिक बातें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं 9639012111 पर। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। वास्तु कृष्णा को दीजिए इजाजत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यंत्र मंत्र अद्य अनेक दोष निवारणार्थम जपे विनियोग है, अतज्ञास है, ओम क्षोम अंगुष्ठ।

भ्याम नमः, ओम व्रोम कनिष्ठिका भ्याम नमः, ओम ज्रोम करतल करपृष्ठा भ्याम नमः, अध हृदयादिन्यास है सोम हृदयाय नमः, प्रोम शिरसे स्वाहा, प्रोम शिखाई वौषट, व्रोम कवचाय हुम, व्रोम नेत्र त्राय वौषट है, व्रोम

0: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

ये एनटीडी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है, लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इस पे एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों के किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रो फाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रो फाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है, और इसके

पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट्स समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में, 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनेमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनेमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब तो मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रोफाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि, जो मैं पहले बता रहा था आपको, सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनिमिया

0: का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म। ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनिमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है। तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं, ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए, पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही रहेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन। अर्चना जी, ओवर टू यू।
1: जय हिंद, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आइए दोस्तों, अब समय हो चला है आज की एक खास प्रस्तुति का। स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर यह खास प्रस्तुति।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं, बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
3: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
4: जी,
3: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
4: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं, वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
3: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं, फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना करें, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
4: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
3: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख, अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है, या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
4: देखिए, हमारी सोसाइटी जो है ना, वो कहानियां बहुत बनाती है।
3: हाँ,
4: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक, सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे, उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं, रहने तो भैया।
3: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में? और दूसरी चीज, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
4: देखिए, जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
3: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
4: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
3: बिल्कुल।
4: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
3: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, सभी मतलब श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे, और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं क्लोजली, माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
4: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है, सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं। और जब ये सम्मिलित डिसीशन की बात आती है ना, तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
3: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
4: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
3: बिल्कुल।
4: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया। तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो, और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
3: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
4: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं, तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
3: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
4: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
3: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है। माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगी। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलती हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
4: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गांव में, घरों में माओं का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
3: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो वो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी, जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं।
4: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकॉकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहाँ के मौलानाओं से बात करनी पड़ी। कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर। इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है। लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
3: तो मैम, अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे, तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में, उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे, एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए, या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
4: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना, उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना, माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा। तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं, वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए, एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर। जब माएं राशन लेने जाती है ना, वहाँ पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन, तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी, अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन ने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार हैं माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
3: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
4: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर

0: जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना बार बार रीअश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रीअश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना। उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रीअश्योर हो जाता है ना तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी, पॉडकास्ट से पहले मैडम से मेरी बात हो रही थी और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका

0: अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
1: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं।
0: मैम, अंत में मैं चाहूंगी आप एक संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, सबके लिए एक संदेश।
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आएं, माता पिता अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल। तो धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, इतनी सरल भाषा में सहज तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत सही लाभ कई का ये प्रयास आपके जीवन में जागरूकता और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया होगा। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। टीकाकरण न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जब सेहत सही होती है तो लाभ सच में कई होते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं, और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है।

0: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं।
1: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डा विंसी क्लिनिक में आकर, जो कि

0: रीजनल ऑफिस के सामने तेजगढ़ी क्रॉसिंग गढ़ रोड मेरठ।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
2: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
3: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
3: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
4: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनोएंडोस्कोपी केल्स जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
6: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: अरे अंकल सुनिए जरा।
7: हाँ बेटा बोलो।
2: अंकल जी, वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
8: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियंकर के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
5: डॉक्टर प्रियंकर, MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी, FNB VR सर्जन, FICO लंदन, FAICO FVRS PDCR रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
3: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
9: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।

0: बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाव।
1: हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू
0: काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाव।
1: हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है।

0: देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया,
1: नहीं है दर्द वाली दर्द कीमत वाली दुनिया।
0: फिर भी देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया।
1: सुन प्यारे
0: कहो प्यारे मत वाले, काले तू जी का राग दुनिया है भागम भाग।

नहीं कुछ मुश्किल इतना लगा के दिल सुन ले, तेरा गुलजार है ये तेरी ही बहार कली चुन ले। ओ नहीं कुछ मुश्किल इतना लगा के दिल सुन ले, तेरा गुलजार है ये तेरी ही बहार कली चुन ले। सुन प्यारे कहो प्यारे मत वाले, चाहे तू खुशी का राग दुनिया है भगवान।

0: खेड़ के तराना है ये सारा ही जमाना तेरी महफिल।
1: अरे काहे तू गले है तेरे कदम तले है तेरी मंजिल।
0: खेड़ के तराना है ये सारा ही जमाना तेरी महफिल।
1: सुन प्यारे कहो प्यारे मत वादे
0: गले तो खुशी का राज दुनिया है भदम बाग है बाबू।

ओ मिल जुल के जमाने में गुजारा कर ले, आधी तुम खा लो आधी हम खा ले, मिल जुल के जमाने में गुजारा

ये धूल बन सकती है फूल, ऐसा होता नहीं क्यों सोचो किसकी है भूल। मिल बैठो सारे भाई, करो दिलों की सफाई, झाड़ो

0: जुल के जमाने में गुजारा कर ले, आधी तुम खा लो आधी हम खा ले, मिल जुल के जमाने में गुजारा कर ले, तेरा गम मेरा गम यही गाते चले हम, सुख सुख का जीऊ बंटवारा कर ले, मिल जुल के जमाने में गुजारा कर ले।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
1: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
2: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, द विंसी क्लिनिक।
1: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
3: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
4: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
5: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है, ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
4: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
5: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चेदानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
6: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
7: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर्ड रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
8: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: अरे अंकल सुनिए जरा।
9: हाँ बेटा बोलो।
4: अंकल जी, वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
10: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियंकर के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर 1 आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
7: डॉक्टर प्रियंकर, MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी, FNV VR सर्जन, FICO लंदन, FAICO FVRS PDCR रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
5: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज, नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
7: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर्ड रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
11: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।
12: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो, या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
13: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए, छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
9: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
14: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
15: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
16: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
17: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
18: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
17: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
19: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर।
13: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
2: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
3: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
4: डॉक्टर प्रियांग गर्ग, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
5: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
6: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
7: डॉक्टर प्रियांक गर्ग, न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गर्ड रोड, मेरठ।
11: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
12: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
13: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
12: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
14: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

जिसमें सबका मुकदमा चल रहा है। कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है,

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: अरे अंकल सुनिए जरा।
2: हाँ बेटा बोलो।
1: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
3: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांग गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
4: डॉक्टर प्रियांगर, MBBS, MS, ऑप्थल्मोलॉजी, FNB, VR सर्जन, FICO, लंदन, FAICO, FVRS, PDCR, रेटिना सर्जन एवं ROP स्पेशलिस्ट
5: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
6: For consultancy, you may visit Newtima Hospital, opposite LLRM Medical College, Gur Road, Meerut. You may contact 9837056192.
7: Dr. Priyank Garg, Newtima Eye Care. आओ अच्छा देखें।
8: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं हैं।
9: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
10: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
9: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।
11: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
12: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
13: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
12: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
14: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
15: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
16: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
17: हर

0: जय हिंद दोस्तों, मैं वास्तु राज कृष्णा सुभारती विश्वविद्यालय के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में देखने के लिए मिलता है महिलाएं जो दर्द से पीड़ित होती हैं, अक्सर उनके पैरों में कमर में दर्द की समस्या रहती है, तो फिजियोथेरेपी बताया जाता है। तो अगर कभी आप ऐसे किसी क्लिनिक पर या किसी अस्पताल में गए होंगे जहां पर फिजियोथेरेपी किया जाता है, तो आपके मन में कई बार ये भी आया होगा कि ये जो पढ़ाई है फिजियोथेरेपी की, ये कहां से की जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोप होता है, अच्छा कमाई का ये साधन या जरिया बन सकता है। तो इसी बात के समाधान के लिए आज हमने ज्योति राव फुले कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार गोयल जी को आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। सर, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी तरह से फिजियोथेरेपी क्या है, जरा हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को थोड़ा बताएं।
1: फिजियोथेरेपी एक आजकल एक बहुत ही अपकमिंग ग्रोइंग प्रोफेशन है
0: जी,
1: जिसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं वो बिना किसी मेडिसिन और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होता है
0: जी।
1: तो लोग प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी से हम अपने आप को ठीक करें। बेसिकली इसके अंदर हर तरह के पेशेंट्स हैं। अगर हम बात करें, सबसे कॉमन है हमारे पास सबके नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस
0: जी,
1: या फिर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल केसेस, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, बच्चों के अंदर माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ
0: जी।
1: स्पोर्ट्स फील्ड में हम बात करें, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है उनके लिए होता है
0: जी।
1: ओल्ड एज होम में हम बात करें तो ओल्ड एज होम में जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है। इसके अलावा अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी एक अलग सेक्शन होता है जहां पे फिजियोथेरेपी करा के जो नॉर्मल जो वर्कर्स हैं वहां पर उनको फिजिकली फिट रखता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का हर तरह की सर्जरी में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, वहां पे आपको एक डिपार्टमेंट, वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट मिलेगा
0: जी।
1: उस डिपार्टमेंट के काम ये कि जिस टाइप की भी सर्जरी हुई है उस सर्जरी के बाद पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना, उसको वापस चलाना, ये चीजें हमारे प्रोफेशन को बहुत अपग्रेड करती है। हमें हर चीज के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है हमें
0: जी।
1: तो हर किसी को पता होता है कि हाँ, फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है जो एक नॉबल प्रोफेशन है, अच्छा अर्निंग का भी प्रोफेशन है, कि हर कोई इसमें देख को अट्रैक्ट भी होता है कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है। सबके मन में सवाल भी आते हैं कि हम इसको परस्यू करें, हम इस प्रोफेशन में कैसे आए।
0: सर, कई बार हमने भी देखा है कि जब किसी को दर्द की समस्याएं ज़्यादा होती हैं तो जो क्लिनिक्स ऐसे हैं जहां पर फिजियोथेरेपी दी जाती है या ऐसे अस्पताल हैं, तो वहां पर भीड़ होती है, ज्यादातर दर्द से पीड़ित लोग वहां पर जाते हैं। हम इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपी को अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपके यहां पर एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितने साल तक की पढ़ाई होती है?
1: ये बेसिकली जो हमारा बेसिक है हमारे इसमें प्लस टू के अंदर, यानी कि ट्वेल्थ के अंदर
0: जी,
1: जो स्टूडेंट है उसको सब्जेक्ट होना चाहिए PCBE, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इसी साल से हमारे पास एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी आई है NCHP, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट नीट के अंदर अपीयरेंस होनी उसकी बहुत जरूरी है,
0: अच्छा,
1: तभी उसका एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा
0: जी।
1: टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का है, 4 ईयर स्टडी पीरियड एंड 1 ईयर इंटर्नशिप पीरियड होता है
0: जी। यानी पांच साल बाद
1: वो वेल एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा
0: जी। सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को?
1: अगर हम बात करें, हमारे पास वेस्टर्न यूपी के अंदर हमारे इस टाइम सबसे अच्छा टॉप का हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है
0: जी।
1: हमारा अपना एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज है जिसकी वजह से हम बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हमारे पास लगभग 1300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की सर्जरी होती है, हर तरह के पेशेंट बच्चों को देखने को मिलते हैं। और लगभग हमारी जो अपनी OPD है वेस्टर्न यूपी में, लगभग इतनी बड़ी OPD कहीं और नहीं है, इतनी वेल डेवलप्ड OPD। हमारे पास इक्विपमेंट भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, कुछ और इक्विपमेंट्स अभी हमारे और आ रहे हैं इस साल से, हम इसको एडअप कर रहे हैं
0: जी।
1: इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बच्चा अगर आता है तो उसे यूनिवर्सिटी का एक अच्छा अलग एनवायरनमेंट मिलता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी का माहौल है, क्लास के अंदर वेल वेंटिलेटेड, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट सारे के सारे हैं, ऑडियो विजुअल सारे इक्विपमेंट है हमारे, तो वो उस चीज से हम बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देते हैं सारे
0: जी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना, सर ने बताया यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, तो सर अगर कोई, जैसे आपने प्रोसेस तो बताया कि बच्चे को किन किन पैमाने ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम और क्या क्या सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए, जो माँ बाप माता पिता इस वक्त कहीं दूर दराज हमारी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि इस फील्ड के प्रति बच्चों को भी जागरूक करें, क्योंकि कई बार प्लस टू के टाइम पर बच्चे गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है, तो शुरुआती में, पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही बच्चों को या माता पिता को किन चीजों पर या सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए?
1: बच्चा जब टेंथ में होता है, जब तक उसका क्लियर होता है कि मुझे बायो ग्रुप में जाना है या फिर हमें मैथ में या कॉमर्स में या किसी भी कोई भी फील्ड उसको आर्ट लेनी है
0: जी।
1: अगर जिस बच्चे का मन है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है
0: जी,
1: तो उसको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जो है बायो वाले ग्रुप जो है हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और बायोलॉजी पे, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। नीट का एग्ज़ाम सबको पता होता है कि नीट का एग्ज़ाम नॉर्मली मई में होता है, एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उसमें, तो नीट के थ्रू ही हमारे से फिजियोथेरेपी कोर्स में उसको एंट्रेंस मिलेगी
0: जी।
1: इसके अंदर अब जब माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाएं, वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक हर सिटी में है, हर बड़े हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट डेवलप हैं, वहाँ के जो सीनियर्स जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिलें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, अच्छी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को हिसाब से तैयार करें, उनसे भी गाइडेंस लें
0: जी।
1: फिर कोशिश करें कि ऐसा अच्छा सा हमारा कॉलेज चूज़ करना है, तो हमारे पास वेस्टर्न यूपी में बात करें, हमारा बेस्ट कॉलेज है इस टाइम
0: जी,
1: जो बच्चों माँ बाप के लिए बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए।
0: तो क्या कोई और बात, कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे?
1: बेसिकली हमारे पास जो है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम लोग अपने यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी हम कराते हैं यहाँ पे, जिससे बच्चों को एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या अदर जो एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं हमारे फील्ड की उन लोगों से मुलाकात करने के लिए। इसके साथ साथ जहाँ पे हमारे यहाँ नेशनल लेवल के और इवन जो हमारे यहाँ AIU हमारे यहाँ गेम्स हुए हैं उनको होस्ट करने का हमारी यूनिवर्सिटी को मौका मिलता है, तो उसमें हम बच्चों को पोस्टिंग लगाते हैं तो उनको उस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। ये चीज़ें कहीं और इतनी नहीं है। यहाँ पर रेयर सर्जरीज होती हैं हार्ट की या फिर हमारे बोन्स जॉइंट्स की प्लेसमेंट की, जो कहीं और इतनी बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए वो बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये चीज़ें इसको यहाँ पे इनको इन चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा जो उनके आगे लाइफ में हेल्प करेगा। वो चाहे वो बच्चे अपने एकेडमिक फील्ड को चूज करें या तो हमारे यहाँ पे PhD कोर्स भी है, PhD में ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर अपना एस्टेब्लिश क्लिनिक चला रहे हैं तो उसमें इनको बहुत हेल्प मिलेगी, या किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। दोस्तों चलिए यहीं पर हम सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हम उनसे भी बात कर लेते हैं।
2: जय हिंद, मेरा नाम अदीना है, मैं ज्योति राव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की इंटर्न हूँ। मैंने अपनी BPT 2021 में शुरू करी थी और यहाँ पर मेरे 4.5 साल बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज का फिजियोथेरेपी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है। यहाँ पर हमें एकेडमिक और प्रैक्टिकल लर्निंग दोनों ही दी जाती है। ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें फर्स्ट 4 ईयर्स हमें एकेडमिक लर्निंग्स दी जाती है, जिसमें 3rd और 4th ईयर में ही हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल में। हम इन पोस्टिंग्स के दौरान अपने इंटर्न्स, अपने सीनियर्स को देखकर सीखते हैं कि कैसे पेशेंट हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के दौरान हमें रियल पेशेंट एक्सपीरियंस दिया जाता है। रियल पेशेंट एक्सपीरियंस, रियल हैंड ऑन केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज के साथ एक 1100-bedded हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी में पोस्ट किया जाता है। यहाँ हमें दूसरे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर टीम में वर्क करना होता है, जिसमें हमें ऐसे काम करना होता है कि हमारे पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर दी जाए। यूजुअली जो मेरे अदर फ्रेंड्स हैं जिनसे जो BPT परस्यू कर रहे हैं, मैंने उन्हें सुना है कि उनको इंटर्नशिप के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, पर हमारे पास ये लिबर्टी है कि हमारा हॉस्पिटल साथ ही जुड़ा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है, जिससे हमें दूसरे दूसरे सारी फील्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करने का भी मौका मिला है, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी थी। रिसेंटली एक AIU कॉम्पिटिशन, शूटिंग कॉम्पिटिशन होस्ट हुआ था, उसमें मैंने एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सर्व किया है। दिस इज अ वेरी गुड चांस जो मुझे यहाँ मिला बिकॉज आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज में बहुत ही अच्छा रहा है। ये मेरे लिए पर्सनली ग्रोइंग भी था और अकेडमिकली अकम्पलिशिंग भी था। मैं अपनी इस चॉइस से बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज चुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
3: जय हिंद। मेरा नाम जैदुर रहमान है, मैं एक BPT इंटर्न स्टूडेंट हूँ ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में। हमारा 4.5 ईयर्स का कोर्स है। मैं 2021 बैच से ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में हूँ। फिलहाल हमारी इंटर्नशिप चल रही है छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल में, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड है, और हमें साथ ही मेडिकल कॉलेज का एक्सपोजर भी मिलता है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स साइमल्टेनियसली फिजियोथेरेपी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ मिलकर हमें ओवरऑल मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी स्टडीज़ कराते हैं। जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर्स हमें पढ़ाते हैं, और जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेसर्स हमें कराते हैं। फिजियोथेरेपी कोर्स स्टडी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। बेसिक टू एडवांस टेक्निक्स हमें सभी सिखाई जाती हैं एक वेल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हमें सुभारती यूनिवर्सिटी ने दिया है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अप्रॉक्स 1300 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो वार्ड्स अवेलेबल हैं और एक्सेट्रा। ICUs में भी हमारी पोस्टिंग लगती है, लाइक MICU, RICU, न्यूरो ICU एंड सो ऑन। फिजियोथेरेपी को प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में एकेडमिक एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फैसिलिटी बेस्ट प्रोवाइड कराता है। हमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल्स, वर्कशॉप्स रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी से बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रोवाइड्स कराई जाती हैं। हैंड ऑन प्रैक्टिस पेशेंट्स पर और साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोच किया जाता है। सारी फैकल्टी मेम्बर्स हमारे क्लिनिकल हैंड्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं।
0: तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ज्योतिराव फूले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के बच्चों ने जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर किया। सर, चलते चलते मैं चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहेंगे जरा हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूवर्स को, आपका कोई संदेश, कोई मैसेज।
1: मैं चलते चलते मैं ये बोलूंगा पेरेंट्स का और बच्चों से, मैं ये बोलूंगा कि वो ये अब ये बहुत ही अपकमिंग प्रोफेशन है, जो बहुत ज़्यादा या लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। आप लोग भी इस प्रोफेशन के बारे में जानें और अपना एक मन बनाएं कि हाँ, हमें प्रोफेशन के रूप में फिजियोथेरेपी को एक चुनना है। इसके अंदर आप लोग अभी से प्रिपेयर करें बच्चों को कि वो नीट का एग्ज़ाम दें, ताकि उनको एडमिशन आसानी से हो सके।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी भरा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर। जय हिंद, नमस्कार।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
2: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
2: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
3: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
4: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
5: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
7: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
8: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जय हिंद दोस्तों, मैं वास्तुराज कृष्णा सुभारती विश्वविद्यालय के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में देखने के लिए मिलता है महिलाएं जो दर्द से पीड़ित होती हैं, अक्सर उनके पैरों में कमर में दर्द की समस्या रहती है, तो फिजियोथेरेपी बताया जाता है। तो अगर कभी आप ऐसे किसी क्लिनिक पर या किसी अस्पताल में गए होंगे जहां पर फिजियोथेरेपी किया जाता है, तो आपके मन में कई बार ये भी आया होगा कि ये जो पढ़ाई है फिजियोथेरेपी की, ये कहां से की जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोप होता है, अच्छा कमाई का ये साधन या जरिया बन सकता है। तो इसी बात के समाधान के लिए आज हमने ज्योति राव फुले कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार गोयल जी को आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। सर, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी तरह से फिजियोथेरेपी क्या है, जरा हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को थोड़ा बताएं।
1: फिजियोथेरेपी एक आजकल एक बहुत ही अपकमिंग ग्रोइंग प्रोफेशन है, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं वो बिना किसी मेडिसिन और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी से हम अपने आप को ठीक करें। बेसिकली इसके अंदर हर तरह के पेशेंट्स हैं। अगर हम बात करें, सबसे कॉमन है हमारे पास सबके नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस
0: जी,
1: या फिर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल केसेस, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, बच्चों के अंदर माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ
0: जी।
1: स्पोर्ट्स फील्ड में हम बात करें, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है उनके लिए होता है
0: जी।
1: ओल्ड एज होम में हम बात करें तो ओल्ड एज होम में जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है। इसके अलावा अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी एक अलग सेक्शन होता है जहां पे फिजियोथेरेपी करा के जो नॉर्मल जो वर्कर्स हैं वहां पर उनको फिजिकली फिट रखता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का हर तरह की सर्जरी में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, वहां पे आपको एक डिपार्टमेंट, वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट मिलेगा
0: जी।
1: उस डिपार्टमेंट के काम ये कि जिसके टाइप की भी सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के बाद पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना, उसको वापस चलाना, ये चीजें हमारे प्रोफेशन को बहुत अपग्रेड करती है। हमें हर चीज के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है हमें
0: जी।
1: तो हर किसी को पता होता है कि हाँ, फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है जो एक नॉबल प्रोफेशन है, अच्छा अर्निंग का भी प्रोफेशन है, कि हर कोई इसमें देख को अट्रैक्ट भी होता है कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है। सबके मन में सवाल भी आते हैं कि हम इसको कैसे, हम परस्यू करें, हम इस प्रोफेशन में कैसे आए।
0: सर, कई बार हमने भी देखा है कि जब किसी को दर्द की समस्याएं ज्यादा होती हैं, तो जो क्लिनिक्स ऐसे हैं जहां पर फिजियोथेरेपी दी जाती है या ऐसे अस्पताल हैं, तो वहां पर भीड़ होती है, ज्यादातर दर्द से पीड़ित लोग वहां पर जाते हैं। हम इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपी को अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपके यहां पर एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितने साल तक की पढ़ाई होती है?
1: ये बेसिकली जो हमारा बेसिक है हमारे इसमें, प्लस टू के अंदर यानी कि ट्वेल्थ के अंदर
0: जी,
1: जो स्टूडेंट है उसको सब्जेक्ट होना चाहिए PCBE, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इसी साल से हमारे पास एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी आई है NCHP, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट नीट के अंदर अपीयरेंस होनी उसकी बहुत जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तभी उसका एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा
0: जी।
1: टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का है, 4 ईयर स्टडी पीरियड एंड 1 ईयर इंटर्नशिप पीरियड होता है
0: जी। यानी पांच साल बाद
1: वो वेल एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा
0: जी। सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को?
1: अगर हम बात करें, हमारे पास वेस्टर्न यूपी के अंदर हमारे इस टाइम सबसे अच्छा टॉप का हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है
0: जी।
1: हमारा अपना एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज है, जिसकी वजह से हम बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हमारे पास लगभग 1300 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हर तरह की सर्जरी होती है, हर तरह के पेशेंट बच्चों को देखने को मिलते हैं। और लगभग हमारी जो अपनी ओपीडी है वेस्टर्न यूपी में, लगभग इतनी बड़ी ओपीडी कहीं और नहीं है, इतनी वेल डेवलप्ड ओपीडी। हमारे पास इक्विपमेंट भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, कुछ और इक्विपमेंट्स अभी हमारे और आ रहे हैं इस साल से, हम इसको एडअप कर रहे हैं
0: जी।
1: इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बच्चा अगर आता है तो उसे यूनिवर्सिटी का एक अच्छा अलग एनवायरनमेंट मिलता है। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी का माहौल है, क्लास के अंदर वेल वेंटिलेटेड सारे मॉडर्न इक्विपमेंट सारे के सारे हैं, ऑडियो विजुअल सारे इक्विपमेंट है हमारे, तो तो वो उस चीजों से हम बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देते हैं सारे
0: जी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना, सर ने बताया यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, तो सर अगर कोई, जैसे आपने प्रोसेस तो बताया कि बच्चे को किन किन पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम और क्या क्या सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए, जो माँ बाप माता पिता इस वक्त कहीं दूर दराज हमारी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि इस फील्ड के प्रति बच्चों को भी जागरूक करें, क्योंकि कई बार प्लस टू के टाइम पर बच्चे गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है, तो शुरुआती में, पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही बच्चों को या माता पिताओं को किन चीजों पर या सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए?
1: बच्चा जब टेंथ में होता है, जब तक उसका क्लियर होता है कि मुझे बायो ग्रुप में जाना है या फिर हमें मैथ में या कॉमर्स में या किसी भी कोई भी फील्ड, उसको आर्ट लेनी है
0: जी।
1: अगर जिस बच्चे का मन है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है
0: जी,
1: तो उसको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जो है बायो वाले ग्रुप जो है हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और बायोलॉजी पे, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। नीट का एग्ज़ाम, सबको पता होता है कि नीट का एग्ज़ाम नॉर्मली मई में होता है, एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उसमें, तो नीट के थ्रू ही हमारे से फिजियोथेरेपी कोर्स में उसको एंट्रेंस।
0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
2: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
0: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है। बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे सुबह आरती परिवार के संस्थापक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद है।

0: सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ।
1: जय हिंद वास्तु कृष्ण। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आजाद हिंद रेडियो के बहुत ही सुंदर से स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया है।

0: तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें करते हैं ना कई बार, तो ज्ञान की बातें कई इतनी ज्यादा रूखी होती हैं कि लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण नहीं करते। तो कई बार जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हम जानते हैं इस बात को, कभी कभी ऐसी दवा पिलाई जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं
1: जी,
0: नादान बच्चे होते हैं
1: जी,
0: उनको जब दवा पिलाई जाती है तो कई बार हम उसमें शहद मिला देते हैं
1: जी,
0: तो शहद मिला के पिलाते हैं तो दवा भी ग्रहण हो जाती है और बच्चे को आनंद भी आता है
1: जी।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है। डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं।
1: जैसे कि आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको कि हमारे सुभारती के दृष्टिकोण से हम उनको एक महापुरुष के साथ साथ युग पुरुष कहते हैं
0: जी।
1: और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत को वो सब दिया जो कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता कि एक आदमी इतना सब कुछ क्या किसी देश को दे सकता है
0: जी।
1: लेकिन कभी कभी देख के और जान के दुख होता है कि जो बाबा साहब को बहुत अच्छा मानते हैं या कुछ लोग न्यूट्रल हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उन बाबा की सच्चाई नहीं जानते
0: जी।
1: तो बाबा को केवल दो दृष्टिकोण से पहचाना जाता है हमारे देश के अंदर, एक तो संविधान निर्माता और दूसरा कि दलित उद्धारक
0: जी।
1: लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा साहब का हम जो पूरा कृतित्व देखते हैं
0: जी,
1: तो हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बाबा से अछूता रहा है, जिसमें बाबा का योगदान नहीं है
0: जी।
1: जैसे आप महिलाओं को ले लीजिए, महिलाओं को समानता दिलाने का, उनका न्यायिक हक दिलाने का
0: जी,
1: हर दृष्टिकोण से, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे समाज में कोई और अधिकार है, तो उनको समान रूप से समाज में ऊपर उठाने का काम बाबा साहब ने किया
0: जी।
1: और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो प्रसूति अवकाश है ना
0: जी,
1: ये भी बाबा साहब की ही देन है। ये बाबा साहब ने, जब ये वायसराय के एक परामर्शदाता थे
0: जी
1: अंग्रेजों के टाइम में, तब उन्होंने, उनके कहने पर वायसराय ने प्रसूति अवकाश की घोषणा की थी। तो ये कंट्रीब्यूशन लोग नहीं जानते। इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है
0: जी,
1: श्रमिक वर्ग को पहले 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, ये जितना मालिक का मन होता था वो उतना उससे काम कराता था, और जो चाहता था वो उसको वेतन देता था
0: जी,
1: और उसको बोलने का अधिकार नहीं था
0: जी।
1: तो श्रमिकों के लिए बाबा साहब ने कि 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी उनसे नहीं ली जा सकती उनकी मर्जी के विरुद्ध
0: जी सर।
1: और ऐसे ही प्रति सप्ताह उनको एक अवकाश दिया जाना जरूरी है
0: जी,
1: ये बाबा साहब की देन है। इसके अतिरिक्त उनको इस बात का अधिकार उन्होंने दिया कि आप संगठित होकर यूनियन बनाकर अपनी आवाज को उठा सकते हैं
0: जी।
1: तो ये श्रमिकों के लिए उनका योगदान था। अब आप इसके अलावा देखिए कि जो हमारे जल प्रबंधन नीति
0: जी,
1: उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार ये देखा गया ना कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कहीं तो सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, और कहीं बाढ़ आ रही है
0: जी,
1: तो विभिन्न नदियों को जोड़कर और जहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाया जाए, तो इस तरह के अटल जी को इसका क्रेडिट दिया जाता है। बिल्कुल, अटल जी ने योजना बनाई थी, वो कार्यरूप

0: आज भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा था। सब जमींदारी जो चलती थी उसमें जितना भी श्रमिक था वो उसमें काम करता था, तो श्रमिक उसका उसको लाभ कुछ नहीं मिलता था, जो उसको मेहनताना मिल गया तो मिल गया,
1: बस मजदूरी जो मिल गई वो मिल गई,
0: मजदूरी जो मिल गई
1: जी
0: गया।
1: सर,
0: तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई सारे देश के अंदर जो खेती है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, और उसमें जो मजदूर है उसको मजदूरी के अलावा जो वहां से लाभ होता है उसका भी एक भाग मिलना चाहिए। तो बाबा साहब कोऑपरेटिव फार्मिंग के बहुत बड़े उनका चाहते थे, वो नहीं हो पाया लोगों ने, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात का संदेश दिया। तो उससे दूसरा लाभ क्या होता है कि देखिए अभी हम जब छोटे छोटे खेत होते हैं
1: जी,
0: तो हम उसमें अच्छी फसल नहीं उगा सकते, अब बड़े बड़े उपकरण हम लोग यूज नहीं कर पाते
1: जी,
0: लेकिन जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी तो जो छोटा खेत है वो बहुत बड़ा खेत हो जाएगा, और उसके अंदर जितनी मशीनरी है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो अधिक फसल उपजा सकते हैं और श्रमिकों को सम्मान और उसमें से उनका उसका भागीदारी भी मिले। तो ये एक बाबा साहब का श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
1: सर, आम जनमानस को ये सारे योगदान के बारे उतनी नॉलेज नहीं है आज भी, सर।
0: नहीं है। औद्योगिकीकरण आप देखिए, जहाँ एक और हम ये विरोधाभास देखते हैं, जहाँ एक और हमारे गांधी जी ये थे कि भाई कुटीर उद्योग ही होने चाहिए और हथकरघा और खादी के ऊपर जोर था उनका
1: जी,
0: बाबा साहब ने कहा कि देखिए क्या है कि हमारे यहाँ से जो कच्चा माल बाहर ले जाते हैं अंग्रेज लोग, वो हम पे गुलाम कैसे बने, हम
1: वो
0: हमारी जो आर्थिक शोषण हुआ वो उसका आप जड़ में जाइए, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ से देश में से कच्चा माल ये अंग्रेज ले जाते थे
1: जी,
0: और उसी कच्चे माल को अपने उद्योगों में उसका अंतिम उसका प्रोडक्ट बनाकर
1: जी
0: वो बहुत ही महंगे दामों पर हम ही भारतीयों को बेचते थे। तो बाबा साहब इस बात के बहुत बड़े पक्षधर थे कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे क्योंकि उसके बिना उन्होंने कहा देश प्रगति नहीं करेगा, ये बात आप देखिए। फिर जब हम बाबा साहब के इसके बारे में देखते हैं तो कितना बड़ा योगदान, आज हम देश हमारा एक है
1: जी।
0: क्यों एक है? क्योंकि यहाँ पर सनातन अभी भी मजबूत है
1: जी।
0: जिस दिन सनातन टूट जाएगा उस दिन ही देश टूट जाएगा, तो बाबा साहब का एक सनातन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और जब बाबा साहब ने 1935 में घोषणा कर दी थी कि भाई मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं
1: जी,
0: अगर उनका सनातन के प्रति, जो मैं कहता हूँ ना सनातन, हिंदू केवल सनातन अपने आप को सनातन का ऐसा नहीं है
1: जी,
0: हिंदू तो सनातनी है ही, लेकिन जितने भी भारतीय मत हैं जैन सिख बौद्ध ये सब सनातनी है
1: जी सर।
0: इसमें पूजा पद्धति किसी की कुछ हो सकती है, मान्यता कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब सनातनी है
1: जी।
0: तो बाबा साहब अगर सनातन से विमुख होते तो उनको कौन रोक रहा था, 1935 में वो धर्म बदल सकते थे
1: जी।
0: और जब ये घोषणा उन्होंने कर दी तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े उनके पास ऑफर आए
1: जी।
0: क्रिश्चियंस ने कहा कि भाई हम आपको पूरा का पूरा एक आइलैंड देने को तैयार हैं और आप ईसाई बन जाइए। उधर से हैदराबाद निजाम ने तो चेक बुक लेके चेक उनका, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, दुनिया का उस सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निजाम था।
1: अच्छा।
0: उसने चेक ब्लैंक चेक उसने लिख दिया और एक नंबर लिख के बाद उसने बाबा साहब से कहा कि आप जितने जीरो लगा सकते हो उतना जीरो लगा लो।
1: अच्छा।
0: और आप मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन मैं सनातन छोड़ दूंगा उस दिन ये देश टूट जाएगा। और सही बात भी थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे देश से हमारे समाज से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, परंतु में जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कोई विशेष प्रभाव पड़ नहीं रहा है, तो 1956 में उन्होंने अपनी मृत्यु से केवल लगभग 1.5 माह पहले
1: जी
0: उन्होंने सनातनी बौद्ध मत स्वीकार किया।
1: अच्छा।
0: और लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध मत स्वीकार किया
1: जी।
0: तो कितनी बड़ी धर्म रक्षा हुई, सनातन की धर्म की रक्षा हुई बाबा साहब के द्वारा, ये हमें समझना चाहिए
1: जी सर।
0: फिर आप आज जो हमारा रिजर्व बैंक है
1: जी,
0: रिजर्व बैंक को आप जानते हैं कि ये इसकी जो कॉन्सेप्ट था रिजर्व बैंक का, ये आया कहाँ से
1: जी?
0: ये बाबा साहब ने जब शोध अपना किया
1: जी,
0: PhD करी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था
1: जी,
0: उससे उनके शोध पत्र था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये बाबा साहब का शोध पत्र था, इसके आधार पे रिजर्व बैंक की संरचना हुई स्थापित हुआ वो
1: जी।
0: हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इनके प्रति विमुख ना, तो उनके ये सारे जो योगदान जब लोगों को पता चल रहे हैं, तो जिसको भी पता चल रहा है वो कई लोग तो मेरे पास आए
1: जी
0: कि आपने तो हमारी अवधारणा बिल्कुल ही पूरी तरह बाबा साहब के बारे में परिवर्तित कर दी। हम तो केवल ये सोचते थे कि बाबा साहब गांधी जी के विरोधी थे और वो देश के भी बहुत ज्यादा जो आजादी के रूप में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अब हम समझ

0: है कि हम गलत थे
1: जी।
0: तो ये जो लोगों के बाबा साहब के बारे में अवधारणा थी वो हमने काफी चेंज करी है। अब जितने भी लोग आए उन्होंने देखा
1: जी।
0: एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग नहीं जानते कि जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के समय केवल बाबा साहब एक ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से धर्म के आधार पर देश के विभाजन का विरोध किया।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा ये धर्म के आधार पर कैसा विभाजन होगा कि जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो तो भारत में ही रह जाएंगे। तो जो ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते ये तो बात ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो जा रहे हैं आप ठीक है राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन्ना साहब हल्ला मचा रहे हैं आप उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन आप ये कह के भारत का डिवीजन कर रहे हैं कि साहब हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते
1: जी,
0: तो इस आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके बड़े प्रबल रूप से वो विरोधी थे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये बात सच मान भी ली जाए जो कि है नहीं सकते कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते
1: जी,
0: क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उसको मैं भी बिलीव करता हूँ बाबा साहब भी कहते थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे समाज में जो हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग हैं ये एक शरीर है तो एक आत्मा है, और अगर शरीर में से आप आत्मा निकाल दीजिए तो क्या होगा, शरीर किसी काम का है
1: नहीं सर,
0: और अगर आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्मा भटकती रहती है
1: जी,
0: है ना, उसको तो भूत कहते हैं
1: जी सर, जी सर।
0: तो आप भूत बन के रह जाएंगे
1: जी।
0: तो जो विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे शरीर में शरीर भौतिक शरीर और आत्मा दोनों होनी चाहिए, इसीलिए देश के विकास के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें, और यही बाबा साहब का मत था, इसीलिए बाबा साहब विरोध करते थे। उनका दृष्टिकोण लोगों को नहीं पता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भाई ठीक है अगर मैं मान लूं, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कल्पना करिए कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं तो जितने यहां पर मुसलमान रह जाएंगे भाई
1: जी,
0: तो वो क्या करेंगे, उनको भी चले जाना चाहिए
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो ये जो इतना मुखर होकर स्पष्ट रूप से कहने वाला अगर कोई था तो केवल बाबा साहब थे, उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है
1: जी।
0: तो देश के कितने बड़े वो विचारक थे, और आप सोचिए अगर उनकी इस बात को मान लिया गया होता उस समय, अगर बाबा साहब की बात मानी गई होती और देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज हमारी जो कितनी सारी समस्याएं हैं वो हमारे नहीं होती
1: जी।
0: तो इसलिए इस मेले में हमने जहां लोगों को मनोरंजन के साधन दिए, उनको आकर्षण दिए, तो हमने बाबा के बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी, और बड़ा लाभ हो रहा है
1: जी।
0: समाज को एकजुट करना है। दूसरा, ऐसे ही बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है
1: जी।

0: भगवान बुद्ध के बारे में भ्रम है। भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं कि भाई वो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को राहुल को और यशोधरा को सोता हुआ छोड़ के चले गए, बिल्कुल गलत है ये।
1: अच्छा
0: हाँ, सच्चाई ये है कि उनका पहले से योजना थी, वो बाकायदा योजना के अनुसार उन्होंने निष्क्रमण किया था और वो अपना घर छोड़कर संन्यास उन्होंने लिया था। इस बात की पूरी जानकारी यशोधरा जी को थी
1: जी,
0: और उनकी सहमति थी, और जाते समय यशोधरा जी मिली थी उनको, यशोधरा जी ने उनसे कहा था कि आप जा तो रहे हो लेकिन आप केवल अपने उद्धार की बात में सोचना। आप सोचना तो पूरे समाज के लिए आप ऐसा रास्ता खोजो जिससे पूरा समाज लाभान्वित। अब कितनी ये भ्रम है लोगों में कि अब वो छोड़ के चले जाए सोते में, तो ये सब भगवान बुद्ध के बारे में हमने यहाँ पर लोगों को जानकारी दी।

0: और बौद्ध मत के बारे में भी कि बौद्ध मत किस रूप में एक पूरी तरह से आप देखिए वैज्ञानिक धर्म है ना, जो लौकिक व्यवहार के ऊपर आधारित है। सनातन है, सनातन का अर्थ है जो सदैव से था और जो सदैव रहेगा। तो कोई भी पूजा पद्धति तो सनातन नहीं हो सकती, कोई पूजा पद्धति सदैव से नहीं थी, ये तो चेंज होती रहती है। पहले हवन होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें बलि दी जाती थी, फिर मूर्ति पूजा होने लगी, फिर ध्यान किया जाने लगा। जो हमारे विभिन्न समय समय पसंद आए, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देख के लोगों के दोषों को दूर करके पूजा पद्धति में परिवर्तन किए। नहीं तो सनातन का जो मूल भाव है वो है हमारा लौकिक व्यवहार
1: जी।
0: अगर हम लौकिक व्यवहार में देखें, हमारे में प्रेम करुणा मैत्री समानता और समन्वय के भाव है, तो वो सनातन है
1: जी।
0: और हमारे भारतीय मत तो कम से कम जितने भी हैं वो सब सनातनियों को ये भाव समय समन्वय सबसे महत्वपूर्ण इसमें समन्वय है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुस्लिम और ईसाई और यहूदी पारसी ये लोग भी समन्वय का भाव रखते हैं तो ये भी सनातनी है
1: जी।
0: समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का अर्थ ये है कि मैं अपनी मान्यता में विश्वास रखता हूँ, मैं उसको मानूंगा, लेकिन मैं आपकी मान्यता का भी सम्मान करता हूँ
1: जी।
0: मैं विश्वास उसमें नहीं करता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन सम्मान
1: करता हूँ मैं,
0: है ना। ये समन्वय
1: जी,
0: मैं आपकी बात आप अपने स्वीकार करिए, मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी बात आप पे नहीं थोपूंगा, आप अपनी बात मेरे पे मत थोपिए। तो ये समन्वय है, ये हमारे सारे भारतीय मतों में
1: ये दो धारणाएं बिल्कुल टूटी हैं सर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में भी। क्योंकि कहीं ना कहीं आम धारणा ये है कि बुद्ध तो सोते हुए बच्चों को अपने छोड़कर चले गए थे। आपकी बात सुनकर जरूर ये जागरूकता आएगी।

0: जब मैं आपको देखता हूँ, हालांकि पहले भी जब मेरी आपसे इस बारे में बात हुई कि इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कैसे कर पाते, मैंने आपकी जीवनी का पहला हिस्सा पढ़ा, समझ में आया कि आपका पालन पोषण किस तरह से हुआ, आप जो एक व्यक्तित्व है वो किस तरह से आपने खुद की पर्सनैलिटी को भी बनाया। और करियर के शुरुआती दौर की भी बात हम करेंगे, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर रोड पर जो एक छोटा सा क्लिनिक पहले आपने बनाया, तो मेरे गांव से मैं एक ऑटो में बैठकर सफर किया करता था मेरठ आने के लिए। तो एक बार मैं ऑटो में पीछे बैठा था, दो बुजुर्ग दंपत्ति थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, तो एक की आंखों पर काले चश्मे चढ़े थे। मैं नहीं जानता था सुभारती अस्पताल के बारे में, तो वो ऑटो में बैठकर क्या बातें हो रही हैं सर, वो बुजुर्ग दंपत्ति जो बूढ़ी अम्मा थी वो कह रही है कि मेरी आंखें बनाने के लिए जा रहे हैं सुभारती। तो जो बाकी सवारियां बैठी थी वो कह, हाँ हाँ सुभारती बहुत ही सस्ते में हो जाता, बहुत बढ़िया है। उनके पास पैसे नहीं थे सर, यहां से 50-60 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर बैठा कोई गरीब आदमी अगर ये सोच पाता है, कोई बुजुर्ग ये सोचता है कि चलो सुभारती चलते हैं और वहां जाकर मेरी आंखों का इलाज हो जाएगा या कोई और इलाज हो जाएगा, तो ये एक अमूल्य योगदान है सर आपका सुभारती अस्पताल के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास आज भी अच्छा महंगा इलाज अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं आवाम की तरफ से, सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा अस्पताल दिया। अभी दो दिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज भी फ्री होता है सर हमारे अस्पताल में, क्या कहेंगे सर?
1: हाँ वास्तु कृष्णा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी
0: जी सर,
1: तो मेरे पिताजी डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर थे
0: जी,
1: और उन्होंने मेरे से एक वादा लिया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि भाई आप पुराने, आज के जमाने की बात अपनी जगह, लेकिन पुराने हमारे समय में हम लोग जो भी काम करते थे अपने माता पिता से अनुमति लेके, आशीर्वाद लेके ही करते थे
0: जी।
1: तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दशा लगा दी थी आशीर्वाद देते समय।
0: अच्छा।
1: उन्होंने ये दशा लगाई थी कि तुम्हें मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारी क्लिनिक से कभी कोई जना इसलिए वापस नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है
0: जी।
1: तो मैंने उनको ये वचन दिया था, तो मैं अपने उस वचन का मैंने पालन किया। पहले मैंने अपनी प्राइवेट निजी क्लिनिक खोली, निजी अस्पताल खोले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आकर मेरे से कहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है या पैसे कम है और मेरा इलाज आप कर दीजिए, मैंने उसको मना किया। हमारे यहाँ वही परंपरा आज भी चली आ रही है, आज बड़े बड़े अस्पताल हो गए ऊपर वाले की कृपा से, मेरे प्रभु कृपा है। तो यहाँ आज भी वही नियम है सुभारती में कि आपके पास पैसे हो ना हो इसका कोई मतलब ही नहीं, मोतियाबिंद तो निःशुल्क होता ही है, डिलीवरी माताओं की निःशुल्क होती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा रही है कि भाई घर में डिलीवरी हो जाती है तो उससे बड़े नुकसान होते हैं, तो उनकी अच्छा जो घर में डिलीवरी

0: होती है उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण गरीबी है। तो ठीक है, कुछ बड़े बड़े परिवार के घरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर बड़े घराने हैं, बड़े परिवार हैं, तो अपने घर के अंदर ही अस्पताल सही बना देते हैं, तो वो तो हम नहीं कह सकते कि घर की डिलीवरी है। लेकिन जो गरीब महिलाओं के डिलीवरी घर में हो जाती है, क्योंकि वो डरती हैं कि अस्पताल जाएंगे पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, तो ये सब हमारे निःशुल्क होता है, हम उसको निःशुल्क देते हैं। और जो अगर हमारे यहाँ उस निःशुल्क डिलीवरी के बाद भी अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती है, तो सम्मान पूर्वक उस माँ को 1000 रुपए का नकद इनाम दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: और उस बच्ची को उसका इंश्योरेंस दिया जाता है कि वो
1: अस्पताल की तरफ से
0: कि इसको अब अगले 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको रेगुलरली बच्चे को दिखाते रहें, टीका लगवाते रहें।
1: अच्छा।
0: तो ये सब हम लोग करते हैं।
1: ये तो सर हमें भी नहीं पता था।
0: हाँ।
1: तो अगर कोई भी डिलीवरी यहाँ पर होती है,
0: हाँ,
1: और बेटी पैदा होती है,
0: हाँ,
1: तो अस्पताल उसको इनाम के बतौर माँ को पैसे,
0: हाँ,
1: भी देते हैं,
0: हाँ,
1: और अगले कुछ समय तक इलाज भी, 5 साल
0: तक बच्ची का, क्योंकि ये पीरियड होता है ना जिसमें बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह लगना जरूरी है। 5 साल के बाद बच्चे में रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरह हो जाती है, फिर तो आवश्यकता नहीं पड़ती
1: जी।
0: लेकिन 5 साल तक उसको रेगुलर टीका लगवाना जरूरी है
1: जी।
0: वही जो गरीब आदमी है ग्रामीण क्षेत्र का है, वो कई बार टीके नहीं लगवाता
1: जी।
0: दोनों ही कारण होते हैं, एक तो ये कारण होता है कि उसको अनजान है वो
1: जी,
0: और दूसरा ये भी कारण होता है उसको डर लगता है कि अस्पताल में जाएंगे तो पैसे मांगे जाएंगे
1: जी।
0: तो बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से भी सुविधाएं निःशुल्क हैं, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वहां पर जाते वैसे ही डरते हैं। उस भारती की तरफ से हम उनको बाकायदा कहते हैं कि आप बच्चे को पूरे सब उसका टीका वगैरह लगवाइए, दिखाते रहिए कि कोई कमी हो, 5 साल तक सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क होता है।
1: क्या बात है।
0: और जो भी, ये तो मैंने कुछ बता दिया आपको, लेकिन कोई सा भी रोग हो
1: जी,
0: हमारी परंपरा ये है सुभारती की, जो मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल से, सुभारती अस्पताल से, चाहे वो सुभारती अस्पताल मेरठ का हो, चाहे सुभारती अस्पताल हमारे देहरादून में भी एक अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, चक्राता रोड पे झाजरा ग्राम में
1: जी,
0: तो हमारे सुभारती के अस्पतालों में ये परंपरा है, ये नियम है कि किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो भी उसको लौटाया नहीं जाएगा, जो उसकी सामर्थ्य हो वो करे, नहीं तो बाकी हमें।
1: इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ आपका नाम अतुल है, आप अतुलनीय योगदान कर ही रहे हैं सर। तो हमारे श्रोताओं को और देखने वालों को भी ये पता चल ही गया आपके माध्यम से कि अगर यहाँ पर डिलीवरी होती है तब भी हर तरह से हर संभव प्रयास किया जाता है मदद करने के लिए।

0: सर अब बात करते हैं आज के समय की। आपने कामयाबी हासिल की अपने जीवन में और मेरे ख्याल से जो भी ख्वाब जो भी सपने आपके बचपन में या युवा पीढ़ी में रहे होंगे आपके सभी पूरे हो गए होंगे, तो क्या अभी कोई और सपना कोई ख्वाब आपका बचता है सर?
1: देखिए जब तक जीवन है तो सपने तो देखने ही हैं
0: जी,
1: और देखने हैं, लेकिन ये सोते के सपने नहीं है
0: जी।
1: जो मैं सपने देखता हूँ जागते में देखता हूँ
0: जी सर।
1: तो देखिए मेरा अब मैं आपने बिल्कुल कहा कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से जब मैं इसका कभी देखता हूँ इसको नजर इस पर डालता हूँ तो मुझे अब नहीं लगता कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सामान्य घर से निकला। मेरे पिताजी शिक्षक थे, जैसे आपने पढ़ाई है उसमें
0: जी,
1: और कोई घर में संपत्ति वगैरह किसी तरह का नहीं था। क्लिनिक भी मैंने जो आरंभ में ली थी वो एक चौरसिया नर्सिंग होम में शिफ्ट करी थी कि भाई मैं उनके रोगियों को निःशुल्क देखूंगा, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए चैम्बर दे दिया था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई किराए पे भी क्लिनिक ले सकूं। अपनी क्लिनिक होने की तो बात ही छोड़ दीजिए
0: जी,
1: पर क्लिनिक लेने के लिए किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने इस शर्त के ऊपर चौरसिया नर्सिंग होम में चैम्बर लिया था
0: जी,
1: और आज मेरे पे कोई कमी नहीं है। देखिए मेरठ में पूरा विश्वविद्यालय है, लोकप्रिय अस्पताल है, मेरी बहुत बड़ी 200 गायों की गौशाला है, एक अस्पताल किठौर में है, ऐसे बिजनौर में मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं, और देहरादून में पूरा मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि जितनी भी सोच थी उससे मैंने अधिक प्रभु कृपा से मैंने स्थापित कर दिया
0: जी।
1: मैंने ये भी स्थापित कर दिया कि आदमी अगर सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से चलता है, तो उसके आरंभ करने के लिए भी पैसा होना जरूरी नहीं है। बिना पैसा हुए भी आप सही रास्ता पकड़ेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कमा सकते हैं और सामाजिक रूप से भी कमा सकते हैं। तो ये भी मैंने अपने जो युवा पीढ़ी है उसको जब ये मेरी किताब पढ़ेगा, मेरी जीवनी पढ़ेगा, ये सब देखेगा, तो इस बात को उसको समझ आ जाएगा। तो वहां उस दृष्टिकोण से तो मुझे अब और आगे करने की इच्छा नहीं है। और जैसे मैं, आप जानते हैं कि मैं बौद्ध मत को मानने वाला हूँ
0: जी,
1: तो तथागत ने भी कहा है कि भाई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी कोई तृष्णा नहीं है कि मुझे अब और नई कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, नया मेडिकल कॉलेज बनाना है या नया अस्पताल बनाना है, ऐसी मेरी कोई तृष्णा नहीं है
0: जी।
1: ये सब काम मैंने अपने बच्चों को धीरे धीरे मैंने दे भी दिए हैं और धीरे धीरे जो रह गए वो मैं दे रहा हूँ
0: जी।
1: अब जो मेरा जो सपना है वो सपना ये है कि हमारा जो भारत है वो बौद्धमय हो
0: जी।
1: यहाँ मैं बौद्धमय हो जाने का जो है स्पष्ट कर दूं, बौद्धमय का मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो अपने अपने मतों को छोड़कर और बौद्ध मतावलंबी हो जाएं
0: जी।
1: जब हम बौद्धमय कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में प्रेम करुणा मैत्री समानता सद्भावना और समन्वय का भाव प्रवाहित हो
0: जी
1: सबके मन में। आप पूजा पद्धति कुछ भी रखें लेकिन आप में एक दूसरे में समानता होनी चाहिए। आप जो जातियां हैं इनका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये जातियां रहेंगी, जब तक ये वर्ण रहेगा तब तक लोग आपस में मिल नहीं सकते। हम जो भी समानता की सद्भावना की बात करते हैं तो वो सब बेमानी है। तो एक मेरा उद्देश्य ये है कि सही रूप में भारत बौद्ध में हो और जो हमारा लौकिक व्यवहार है वो तथागत बुद्ध के सिद्धांतों का पंचशील का आधार लेकर वो स्थापित हो
0: जी।
1: और जो हमारे सनातन के जो परिभाषा है उसको लोग सही रूप में समझें कि जो ये लौकिक व्यवहार से संबंधित जो हमारी सोच है
0: जी,
1: जिसको वो सोच सही लगती है, जो उसको सही भी लगती है और अपने जीवन में पालन करता है, वो सनातनी है
0: जी।
1: तो ये मेरा है कि हिंदू जैन सिख बौद्ध लिंगायती रविदासी रामदासी और भी जितने भी इस तरह के मत हैं, हम सब सनातनी है और सनातन हमारा एक हो
0: जी।
1: और उसका कारण क्या? कारण सबसे बड़ा तो यही है कि भाई हम लोगों को इंसानियत के रूप में रहना है, साथ में ये कि अगर हमें देश को एक रखना है, देश में हमें डेमोक्रेसी को बचाना, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको जनतंत्र दिया
0: जी,
1: तो सनातन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कल को आप सोचिए कि अगर दूसरे मतों का यहाँ पर बोलबाला हो गया और उनके नियम चलने लगे तो सबसे पहले जो कुठाराघात होगा हमारे संविधान पे होगा और हमारे जनतंत्र पे होगा। एक तो मेरा सपना ये है और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मेरा सपना है जो दोनों इंटरलिंक्ड हैं
0: जी,
1: ये कब होगा? ये कब तब होगा कि जब हमारे में कोई राष्ट्रीय चरित्र होगा। अभी तक तो हमारे में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। हमारा जो हम केवल जो हमारी सोच है तो अपने तक है, अपने से निकलते तो अपने परिवार, अपने परिवार से निकलते हैं तो अपनी जाति या अपने धर्म
0: जी,
1: उन तक हमारी सोच जाती है, देश तक तो पहुंच ही नहीं पाती। तो हमारा प्रयास ये है कि युवा वर्ग में बड़ों में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो युवा वर्ग के लिए कर रहे हैं कि युवा वर्ग हमारा समझे, जो नाइन्थ क्लास के ऊपर के बच्चे हैं विशेष रूप से, उनमें हम ये भाव उनके विद्यालयों में जा रहे हैं, वहां पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं कि पहले चरित्र समझो और उसके बाद राष्ट्रीय चरित्र समझो। तो ये हम लोग राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की योजना हम लोगों ने रचना के नाम से शुरू की हुई है
0: जी।
1: तो उसमें मैं उस योजना का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ कई लोग जुड़ भी गए हैं जो रिटायर हो गए
0: जी।
1: और रिटायर होने के बाद आदमी क्या करेगा, घर पे खाली है ना
0: जी।
1: तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर घर पे खाली तो खाली क्यों है, आपने जो काम किया अपने जीवन में इतना आपने आपको एक्सपीरियंस हुआ तजुर्बा हुआ उसका लाभ समाज को दो
0: जी,
1: और बिना किसी वेतन के दो, आप तो घर पे खाली बैठे हो
0: जी।
1: तो हमारे साथ चल के किसी कॉलेज में कुछ अपना उद्बोधन दे दो, कुछ लोगों को ज्ञान दे दो
0: जी।
1: तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये दो चीजें वास्तव में कर रहा हूँ।

0: भी है। जैसा आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया में आज इंडियन सिविक सेंस की बात हो रही है कि बहुत बुरा हमको बताया जाता है। ऐसा भी बोलते हैं विदेशों में कि इंडियंस आर डर्टी। हम लोगों के लिए बोला जाता है सिविक सेंस नहीं है हमारे भीतर। ये क्या कारण आपको लगता है सर?
1: देखिए, जब हम आत्मावलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो हम पे ये आरोप लगाए जाते हैं ये गलत नहीं है
0: जी,
1: ये सही है। आप अभी, मैं तो कभी विदेश गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे संबंधी गए हैं विदेशों के बारे में जानकारी, जो सही जानकारी थी, कि किताबों से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विदेशों में लोग गए हैं सही रूप से उन्होंने मुझे जानकारी दी है। उसमें जो हम देखते हैं तो हम लोगों में वास्तव में सिविक सेंस नहीं है। हम अपने घर का कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान है
0: जी,
1: उसमें हम सब ये चीजें भी सिखा रहे हैं कि भाई आप, ये देश आपका है, आप समझो। सिविक सेंस में जितनी भी चीजें आती हैं, आप चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे आप, अब आप ये देखिए कि कहीं भी हमारे में, हम कहते तो हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं
0: जी,
1: सर्वे संतो निरामया की बात करते हैं कि भाई हम सबकी सोच रखते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है किसी चीज के लिए, तो सबसे पहले तो हम आगे घुसने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये जो भाव है ना, केवल अपने आत्म केंद्रित जो लोगों के भाव हैं उसी को परिवर्तन करने की जरूरत है
0: जी।
1: और ये हम इसके जो रचना स्कीम है इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल हमारे प्रयास करने से नहीं होगा, ये हमारे पूरे जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये चीज घर से शुरू होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि स्कूलों में जो हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं खासतौर से
0: जी,
1: उनमें अधिकांश में ये भाव बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो एक घटना आपको बताऊंगा कि हम लोग कार में जा रहे थे
0: जी,
1: उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, तो एक मेरी छोटी बच्ची थी, उसने टॉफी, उसकी आयु होगी लगभग 9 वर्ष के करीब की, तो उसने टॉफी हम सब लोगों ने ली, क्लास मैंने दी सबको टॉफी, तो उसने जैसे मैंने रैपर खोल के लिए, तो उसने मेरे से कहा कि ये पापा ये रैपर मुझे दे दीजिए। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों मांग रही है, खैर हमने दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा, सबके ले लिया उसने, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि आप अभी खिड़की खोलोगे फेंक दोगे बाहर, अब मैं जो हूं जब कार रुकेगी तो कहीं इसको डस्टबिन में डालूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूछा कि तुमको किसने समझाया? उन्होंने कहा मेरी टीचर ने बताया। तो ये जो स्कूल है ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, आ रहा है परिवर्तन, आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें सुधार नहीं हो सकता, सुधार होगा
0: जी।
1: बिल्कुल
0: जी सर, आपने वाकई में बहुत अच्छी बात बताई। और राष्ट्र चरित्र निर्माण जो योजना है, जो ये मुहिम है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उतना ही अच्छा है, और सिविक सेंस को बेहतर बनाना है ये भी जरूरी है।

0: अब सर मैं बात करना चाहता हूँ उस दौर के बारे में जब आपने स्ट्रगल शुरुआत की और अपना, जैसे आपने बताया आपके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि आप कहीं किराए पर एक क्लिनिक खड़ा कर सकें, तो उस समय पर क्या क्या दिक्कतें आपको आई। मैं चाहता हूँ आप इसलिए भी बताएं कि जो युवा पीढ़ी हम जैसे लोग हैं, स्ट्रगल आता है ना सामने सर, लोग फोन नहीं उठाते या पैसा नहीं होता तो बड़े स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं सर आज। तो उस सबसे विपरीत परिस्थितियों में जब आप कुछ भी नहीं थे, तब आपने कैसे डील किया और कैसे आपने कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया सर?
1: वासु देखो, ये तो मैं कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है कि अपने में विश्वास होना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने में विश्वास है तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी
0: जी।
1: और अपने में विश्वास केवल यही नहीं होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, बल्कि ये भी होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा
0: जी।
1: जब आप मन में ये विश्वास करते हो तो रास्ते स्वयं निकलते हैं
0: जी।
1: जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे आरंभ में अनुमति देने से मना कर दिया था, तो मैंने लिखा, ये दृष्टांत अपने पुस्तक में लिखा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल मेरे विरुद्ध थे कि मैं प्रैक्टिस ना करूं
0: जी।
1: तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि तुम मेरे से मांगोगे कि साहब मुझे दुकान लेनी है तो तुम मेरे से किराया मांगोगे, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये तो मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब मैंने अपना प्रयास किया, मैं अपने गुरु से मिला, मैंने उनसे कहा कि साहब मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बताया कि चलो तुम जो हो तुम फ्री में काम करने को तैयार हो, मैंने कहा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, एक नर्सिंग होम के अंदर वहां के मरीजों को तुम्हें फ्री देखना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: तुम्हें बैठने के लिए कमरा दिला दूंगा। तो रास्ता निकला ना
0: जी, जी, जी।
1: मैंने अच्छा अब कभी मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत ईमानदारी से मैंने किया। मैंने 84 नर्सिंग होम में जब उन्होंने मुझे कमरा दे दिया
0: जी,
1: और मैं उनके मरीजों को फ्री जाकर निःशुल्क जाकर देखता था, क्योंकि होते थे किसी दूसरे डॉक्टर के
0: जी,
1: तो अगर मेरे मन में कोई भी जरा सा भी कोई गलत भाव होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये करता कि वो मरीज वहां से टूटकर वो मेरे पास आ जाए, जैसे सामान्यतः हुआ करता है
0: जी सर।
1: मैंने कभी नहीं करा, मैंने कहा कि जो मेरा दायित्व है, बल्कि अगर कभी किसी ने मेरे से, क्योंकि मैं उस अस्पताल में ही चैम्बर में बैठता था और जो बाकी डॉक्टर थे वो बाहर से आते थे जिनके मरीज में देखा करता, तो कई बार वो आके मेरे से कहते कि डॉक्टर साहब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो छुट्टी होने के बाद,
0: अच्छा
1: तो मैं मना कर देता था। मैंने कहा मैं आपको नहीं देखूंगा, वो आपका जो डॉक्टर जिसने आपका किया आपको उन्हीं के पास जाइए।
0: अच्छा
1: तो मैंने सिद्धांतों के साथ कभी लालच में आके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों को ये कहूंगा कि रास्ते निकालो, अपने में विश्वास रखो कि हम सफल होंगे, अपने ज्ञान में विश्वास रखो और इस बात में विश्वास रखो कि हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना, स्वतः रास्ते निकलते हैं। फिर जब थोड़े से मेरे पास पैसे हुआ, थोड़े से जमा हो गए, तो फिर मुझे दुकान किराए की दुकान लेने की बात आई
0: जी।
1: तो उस समय तक मेरे बारे में लोगों को ज्ञान हो गया था कि बहुत ये अच्छा डॉक्टर है और ये ईमानदार डॉक्टर है, ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, फायदा ही करता है, इस पे जो भी दे दो पैसा वो ले लेता है, ना भी दो तो कोई बात नहीं है। ये जब मेरे पास पता चल गई, तो पास ही में थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग थी, वहां गौड़ साहब की बिल्डिंग थी
0: जी,
1: तो उनके पास एक दुकान खाली हुई।
0: अच्छा
1: मैंने उनसे पूछा कि आप, मैं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने आपको पगड़ी वगैरह की बात आई, कैसे हुई? हमारे एक मित्र मिल गए, उन्होंने उसको जाके कहा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पगड़ी नहीं लूंगा।
0: अच्छा
1: हाँ, आप बस किराया दे देना।
0: ठीक,
1: इतना मैं कमा लेता था कि महीने का किराया निकाल दिया उस समय तक। तो मैंने देखा ना, आप अगर अच्छे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता आपको अवश्य

0: समाज इतना बुरा नहीं है ये आपको आगे बढ़ना नहीं देगा
1: जी।
0: हाँ, जैसे कि आप में ये विश्वास होना चाहिए, आपको जैसे पहाड़ से आप देखते हैं, जब पहाड़ में एक पानी नदी जब आप चलती है, तो मैंने अपनी जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसका नाम भी मैंने जीवन तरंगिनी लिखा है
1: जी,
0: है ना। तो तरंगिनी जैसे एक नदी जब पहाड़ से चलती है तो उसको कितने बड़े बड़े अवरोध सामने आते हैं ना
1: जी,
0: कि पत्थर बड़े बड़े पत्थर उसको रोकते हैं
1: जी,
0: है ना। रुकती है क्या? नहीं रुक पाती, वो आती है, उनसे टकराती है और उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनके दाहिने बाहिने से वो नदी निकल जाती है। और ऐसा भी नहीं कि सीधी जाती हो, कहीं उसको मुड़ना पड़ता है, कहीं उसको झुकना पड़ता है, कहीं उसको बढ़ना पड़ता है, और वो इस तरीके से करके और अपने अंतिम लक्ष्य सागर तक पहुंच जाती है। तो हमें उस नदी की तरह होना चाहिए कि सतत हमें प्रयासरत रहना है, अवरोध आएंगे जीवन में, उनका दाया बाया करके रास्ते निकलेंगे, लेकिन अपने में विश्वास कर होगा तभी होगा ये।

0: कई बार बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आए कामयाबी मिलने के बाद, उसके बाद भी लगातार आते ही रहे। तो जब आपके जीवन को मैं देखता हूँ तो आप जीवन भर संघर्ष ही कर रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, मतलब खुद से, कभी समाज से, जो भी परेशानी आई। वो जो मैनेजमेंट होता है सर, कि जब विपत्तियों का टाइम होता है, इंसान को टाइम भी मैनेज करना है, मनी भी मैनेज करना है, परिवार भी देखना है, ये स्किल कैसे कोई भी हम जैसे लोग अपने भीतर जागृत कर सकते हैं?
1: ये भी तुम्हारे कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही बात की है कि मेरे जीवन में सामान्य ही नहीं, बहुत बड़े बड़े विकराल समस्याएं भी आई
0: जी।
1: और वो मुख्य रूप से समस्या इसलिए थी कि मैं अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकता था, हटना चाहता नहीं था, क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ था कि मैं अपने सिद्धांतों का पालन करूंगा
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या तो ये कि वही देश के अंदर हमारे भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब जगह फैला हुआ है, और वो सब मेरे सामने, मेरे आड़े हाथों मुझे लेना पड़ा उनको मेरे सामने, लेकिन मैं झुका नहीं। मुझे ये विश्वास था, सत्यमेव जयते पे विश्वास था। और देखिए, वैसे तो हमारी बौद्ध मान्यता में लोग कहते हैं कि सर तथागत भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी भ्रम है भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होता, उन्होंने नॉन कमिटल थे, उन्होंने कहा ढूंढ लो भाई, खोज का विषय है, जब मिल जाए तो बता देना, जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं भगवान का को मानने के लिए इसे तैयार नहीं हूँ। कि आप कहें कि भगवान ने तो ये जातियां बना दी, ये वर्ण बना दिए, तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा भगवान को, लेकिन अगर भगवान नहीं है ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मेरा कहना यह है कि भगवान हो ना हो, लेकिन भगवान की हमको आवश्यकता है। और हमको आवश्यकता क्यों है कि जब हमें ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा हमारे सामने अवरोध पैदा कर देता है, इतना विकराल अवरोध पैदा कर देता है कि जो हम कई बार लगता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे। तो अगर हम भगवान की जरूरत यहाँ पर पड़ती है कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें बहुत बड़ा संबल मिलता है
0: जी,
1: कि ये हम अगर कुछ भी सही काम कर रहे हैं तो कोई शक्ति है जो हमें बचाएगी। वो शक्ति किसकी है? वो ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर की हमको आवश्यकता है
0: जी।
1: तो मैंने जब भी मेरे सामने ऐसे विकराल समस्याएं आई हैं, मैंने अपना सिद्धांत कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, मैं सही रास्ते पे चलता रहा और मन में ये विश्वास था कि सत्य में जयते है, सत्य की विजय होगी ही होगी। परसीवरेंस मैंने रखी, लगातार मैं लगा रहा और मुझे ये विश्वास था कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर है नहीं, इट इज ए मेटीरियल, लेकिन मुझे इतना बड़ा उसमें आत्म बल मिला कि मैंने उन समस्याओं का सामना किया और हर समस्या के बाद मैं विजयी होकर निकला और अधिक मजबूत होकर निकला।

0: और आज आप हमारे सामने बैठे हैं सर, और मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि न सिर्फ मेरे जैसे लोगों का, न जाने अपने असंख्य लोगों का जीवन बदला है। अस्पताल में हजारों लोग अपना रोज जीवन बदल कर जाते हैं। जब वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, वहां वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और बड़े अस्पताल जो महंगे होते हैं वहां वो जा नहीं सकते, तो उनको एकमात्र अंधेरे में रोशनी का दिया नजर आता है सुभारती अस्पताल, और पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते हैं। मैंने खुद देखा है सर। हालांकि मैंने आपसे 2-5 मिनट मांगे थे, पर बहुत समय बीत गया, क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि मेरा मन और बात करने के लिए करता है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर लालची हो जाता हूं। लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूं सर, हमारे श्रोताओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पेशली दो चीजें सबसे अहम है सर। एक तो स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस है सर युवा पीढ़ी को। रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, पैसे ना कमाने का स्ट्रेस है, और सोशल मीडिया ने भी एक स्ट्रेस दिया है। तो मैं चाहता हूँ इस परिस्थिति से हम लोग कैसे निकले, इसके बारे में कुछ बताएं सर।
1: देखो, बहुत आपने जो प्रश्न पूछे, ये बहुत ही ऐसे प्रश्न है जिनके बहुत ही सार्थक हैं
0: जी,
1: क्योंकि अभी बहुत सारे युवा जो हैं वो हम देखते हैं कि कोई किसी भी कारण से अपने मिशन में फेल हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मिशन हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का मिशन हो, कुछ
0: जी,
1: भी हो
0: जी,
1: और वो डिप्रेशन में चला जाता है, अब मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है, और बहुत सारे हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं
0: जी।
1: तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने में विश्वास रखिए कि आप जीतेंगे। हाँ, हर समस्या के आगे आप अगर उससे दृढ़ता के साथ उसका सामना करेंगे तो उसके बाद जीत आपकी है। दूसरी बात, आप ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ना। आप अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं 2 दिन के अंदर पैसे बन जा, अमीर हो जाऊं, तो ये ऐसा तो सोचना भी चाहिए। जो जो भी चीज बहुत जल्दी आती है वो जाती भी बहुत जल्दी है, तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। आप आराम से अपने मिशन पे, अपने कार्य पे आगे बढ़ते रहें। अवरोध आए तो उसकी चिंता ना करें। मानसिक अवसाद का तो मतलब ही नहीं है। आप जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर हो या ना हो, आप सबसे पहला विश्वास अपने में रखिए
0: जी,
1: अपने प्रयास में रखिए, अपने ज्ञान में रखिए, और दूसरा विश्वास रखिए कि अगर आप सही हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ये विश्वास लेके आप चलिए, अपने को कभी भी कमजोर मत मानिए
0: जी।
1: और जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज के लिए, सफलता के लिए जल्दी मत करिए, लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी, हर कीमत में मिलेगी
0: जी।
1: और अगर आपको कभी कोई संशय हो तो आप जाके दुकान से मेरी जीवन तरंगिणी की किताबें खरीद लीजिए और उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने कितने विकराल समस्याओं का सामना किस तरीके से किया है, और मैं हर समय विजयी रहूं।

0: एक और संदेश मैं जरूर ये देना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता तो अवश्य चाहें
1: जी,
0: उसके लिए प्रयासरत भी हों
1: जी,
0: लेकिन देश को ना भूलें, देश को साथ में रखें। आपके मन में ही होना चाहिए कि मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे देश को नुकसान हो। तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का भाव आपके मन में होना चाहिए, अवश्य ही आप सफल होंगे
1: जी। सर चलते चलते सुभारती परिवार को लेकर आपका क्या विजन है, आवाम भी ये जानना चाहेगी, क्योंकि गांव में कहीं दूर कोई व्यक्ति के जब डाढ़ में दर्द होता है तो सुभारती डेंटल आने की बात करता है, क्योंकि सस्ता इलाज और अच्छा इलाज यही हो सकता है। ऐसी सुभारती अस्पताल है हमारा, तो इन सब को लेकर आपका क्या विजन है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, जरा बताएं।
0: मेरा सुभारती अस्पताल और सुभारती शिक्षण संस्थाओं के संबंध में मेरा विजन और मेरा मिशन यही है कि समाज के जो कम से कमजोर वर्ग है उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। पैसा उसके बीच में आड़े नहीं आएगा, ये मेरा वादा है
1: जी।
0: चाहे उस किसी भी तरह का इलाज हो, उस पैसे में उसको कभी कोई समस्या नहीं होगी। उस पे है नहीं है कितना है ये सब बात की चीजें हैं, लेकिन उसको निराशा नहीं होगी, उसका इलाज यहाँ पर होगा। ये मैंने न केवल मैंने इसका पालन किया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं जो कि अब आगे इसको संभाल रहे हैं और संभालेंगे, वो इस बात में मेरी तरह से पूरी तरह से 100% मेरे से सहमत हैं और मेरे साथ उसको लेकर चल रहे हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें, सब लोग जाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फीस देने के नहीं है, हमारे पास योजनाएं हैं। हमारे पास इस तरह की योजना है कि हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे या कम है तो कम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़कर उसमें कार्य करना है समाज के लिए। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिससे कि कोई भी आदमी को ये भी महसूस ना हो कि भाई मेरे को तो पैसे नहीं दे तो मुझे मजबूर होके किसी के रहम और करम पे पढ़ना पड़ रहा है। हम तो ऑफर दे रहे हैं ना कि भाई आपको हम पूरी रियायत दे रहे हैं जितनी आप चाहते हैं, लेकिन बस ये वादा है कि उसके बाद हमारे साथ समाज को बनाने में, समाज के निर्माण में तुम हमारा साथ देना। तो कितना सुंदर है, हम लोग जॉब पूरी कर लेते हैं उसके बाद नौकरी भी अपने आप देते हैं, उसको सैलरी भी हम देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वादा है, सुभारती का मिशन भी है और सुभारती का वादा भी है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी होगा उसको चिकित्सा और शिक्षा दोनों सुविधाएं उसको अवश्य मिलेंगी। आप आए और आप हमारे ग्रुप में अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो हमारे विभिन्न प्रतिनिधि हैं, और मैं तो कहता हूं कि ये आजाद हिंद रेडियो भी आपका है, आप से ही मिल लें और आप हमारे तक पहुंचा दें उनकी बातें, तो हम उनको कभी निराश नहीं होने देंगे। ये मेरा संदेश है और यही मेरा आपके लिए वादा है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर। ये आपके साथ जो पॉडकास्ट हुआ, जो बैठकर वार्तालाप हुआ, ये मेरे जीवन का रूपांतरित कर देने वाला समय है सर, और आप मेरे हीरो हैं, क्योंकि जीवन के कई खतरनाक और दर्द भरे मोड़ पर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल वॉइस, जब उन्होंने टोक्यो से अपने रेडियो पर, जी हाँ दोस्तों, नेताजी का जो रेडियो था उसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद रेडियो। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए, उन्हीं के विजन को आगे लेकर बढ़ने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने रेडियो का नाम रखा है आजाद हिंद रेडियो। हम नेताजी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में हमेशा देशभक्ति की और क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने रेडियो के प्रसारण में टोक्यो से क्या बोला।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। कंट्रीमैन एंड फ्रेंड्स, इन अप्रैल लास्ट यू हर्ड माय वॉइस ओवर अनदर रेडियो इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई एम इन टोक्यो एंड आई एम एक्सेप्टिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हियर इन ऑर्डर टू स्पीक टू यू अगेन। सिंस आई स्पोक टू यू लास्ट, नो इम्पोर्टेंट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द जनरल वॉर सिचुएशन।
0: आजाद हिंद जिंदाबाद। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो, और एक और हिस्सा एक भाषण का सुनाता हूँ आपको। नेताजी की इस आवाज को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बोलिएगा जय हिंद।
2: जय हिंद,
3: जय हिंद,
2: जय हिंद,
3: जय हिंद।
4: पर आपने यहाँ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या फिर मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।
0: ये तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी आपने सुनी, उस समय पर क्या माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ आपके साथ वास्तु कृष्णा। जय हिंद।

नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल

0: कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ।
0: लाखों लोग हैं, युवा हैं, जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अभी?
1: नहीं देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए
0: जी।
1: और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ तो आदमी तो यार, आदमी कितने वर्ष का है इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक
0: जी,
1: कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मैं, मुझे समाज ने बहुत दिया, मुझे इस देश ने बहुत दिया
0: जी,
1: जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ
0: जी,
1: वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है
0: जी सर,
1: और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक का रखा हुआ है
0: जी,
1: कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ
0: जी। एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है, और आपके नाम से भी मेल खाता है सर। तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर, आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है?
1: मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है
0: जी,
1: लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मैं, मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। जिसके पास पैसा तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहां तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, यही हमारा स्लोगन है
0: जी,
1: कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा
0: होना ही चाहिए,
1: लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या असर है
0: जी।
1: तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है
0: जी, जी।
1: कि हमको आजादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आजादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली, और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा। तो आजाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक बार आजाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूं जय हिंद आजाद हिंद रेडियो।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद दोस्तों, मैं वासुराज कृष्णा सुभारती विश्वविद्यालय के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में देखने के लिए मिलता है महिलाएं जो दर्द से पीड़ित होती हैं, अक्सर उनके पैरों में कमर में दर्द की समस्या रहती है, तो फिजियोथेरेपी बताया जाता है।

0: जरा हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को थोड़ा बताएं।
1: फिजियोथेरेपी एक आजकल एक बहुत ही अपकमिंग ग्रोइंग प्रोफेशन है,
0: जी
1: जिसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को जो ट्रीट करते हैं वो बिना किसी मेडिसिन और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होता है।
0: जी
1: तो लोग प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी से हम अपने आप को ठीक करें। बेसिकली इसके अंदर हर तरह के पेशेंट्स हैं। अगर हम बात करें, सबसे कॉमन है हमारे पास सबके नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस,
0: जी
1: या फिर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल केसेस, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, बच्चों के अंदर माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ।
0: जी
1: स्पोर्ट्स फील्ड में हम बात करें, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है उनके लिए होता है।
0: जी
1: ओल्ड एज होम में हम बात करें तो ओल्ड एज होम में जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है। इसके अलावा अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे फिजियोथेरेपी करा के जो नॉर्मल जो वर्कर्स हैं वहाँ पर उनको फिजिकली फिट रखता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का हर तरह की सर्जरी में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट, वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट मिलेगा।
0: जी
1: उस डिपार्टमेंट के का काम ये कि जिस टाइप की भी सर्जरी हुई है उस सर्जरी के बाद पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना, उसको वापस चलाना, ये चीज़ें हमारे प्रोफेशन को बहुत अपग्रेड करती है। हमें हर चीज़ के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें
0: जी
1: तो हर किसी को पता होता है कि हाँ, फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है जो एक नॉबल प्रोफेशन है, अच्छा अर्निंग का भी प्रोफेशन है, कि हर कोई इसमें देख को अट्रैक्ट भी होता है कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है। सबके मन में सवाल भी आते हैं कि हम इसको कैसे, हम इसको हम परस्यू करें, हम इस प्रोफेशन में कैसे आए।
0: सर कई बार हमने भी देखा है कि जब किसी को दर्द की समस्याएं ज़्यादा होती हैं तो जो क्लिनिक्स ऐसे हैं जहां पर फिजियोथेरेपी दी जाती है या ऐसे अस्पताल हैं तो वहां पर भीड़ होती है, ज्यादातर दर्द से पीड़ित लोग वहां पर जाते हैं। हम इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति फिजियोथेरेपी को अपना करियर बनाना चाहता है तो आपके यहां पर एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितने साल तक की पढ़ाई होती है?
1: ये बेसिकली जो हमारा बेसिक है हमारे इसमें प्लस टू के अंदर यानी कि ट्वेल्थ के अंदर
0: जी
1: जो स्टूडेंट है उसको सब्जेक्ट होना चाहिए PCBE यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इसी साल से हमारे पास एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी आई है NCHP, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट नीट के अंदर अपीयरेंस होनी उसकी बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा,
1: तभी उसका एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा।
0: जी
1: टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का है, 4 ईयर स्टडी पीरियड एंड 1 ईयर इंटर्नशिप पीरियड होता है।
0: जी यानी पांच साल बाद
1: वो वेल एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा।
0: जी सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को?
1: अगर हम बात करें हमारे पास वेस्टर्न यूपी के अंदर हमारे इस टाइम सबसे अच्छा टॉप का हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
0: जी
1: हमारा अपना एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज है जिसकी वजह से हम बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हमारे पास लगभग 1300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की सर्जरी होती है, हर तरह के पेशेंट बच्चों को देखने को मिलते हैं। और लगभग हमारी जो अपनी ओपीडी है वेस्टर्न यूपी में, लगभग इतनी बड़ी ओपीडी कहीं और नहीं है, इतनी वेल डेवलप्ड ओपीडी। हमारे पास इक्विपमेंट भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, कुछ और इक्विपमेंट अभी हमारे और आ रहे हैं इस साल से, हम इसको एडअप कर रहे हैं।
0: जी
1: इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बच्चा अगर आता है तो उसे यूनिवर्सिटी का एक अच्छा अलग एनवायरनमेंट मिलता है। उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी का माहौल है, क्लास के अंदर वेल वेंटिलेटेड, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट सारे के सारे हैं, ऑडियो विजुअल सारे इक्विपमेंट है हमारे, तो वो उस चीज़ से हम बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देते हैं सारे।
0: जी तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना, सर ने बताया यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, तो सर अगर कोई, जैसे आपने प्रोसेस तो बताया कि बच्चे को किन किन पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम और क्या क्या सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए, जो माँ बाप माता पिता इस वक्त कहीं दूर दराज हमारी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि इस फील्ड के प्रति बच्चों को भी जागरूक करें, क्योंकि कई बार प्लस टू के टाइम पर बच्चे गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है, तो शुरुआती में, पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही बच्चों को या माता पिता को किन चीजों पर या सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए?
1: बच्चा जब 10th में होता है,
0: जी,
1: जब तक उसका क्लियर होता है कि मुझे बायो ग्रुप में जाना है या फिर हमें मैथ में या कॉमर्स में,
0: जी,
1: या किसी भी कोई भी फील्ड उसको आर्ट लेनी है।
0: जी
1: अगर जिस बच्चे का मन है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है,
0: जी,
1: तो उसको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जो है बायो वाले ग्रुप जो है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी पे, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। नीट का एग्ज़ाम सबको पता होता है कि नीट का एग्ज़ाम नॉर्मली मई में होता है, एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उसमें, तो नीट के थ्रू ही हमारे से

0: टाइप की कोर्स में उसको एंट्रेंस मिलेगी।
1: जी
0: इसके अंदर अब जब माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाएं, वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक हर सिटी में है, हर बड़े हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट डेवलप हैं,
1: जी
0: वहाँ के जो सीनियर्स जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिलें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे उनकी लाइफ स्टाइल है, अच्छी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को हिसाब से तैयार करें, उनसे भी गाइडेंस लें, फिर कोशिश करें कि ऐसा अच्छा सा हमारा कॉलेज चूज़ करना है तो हमारे पास वेस्टर्न यूपी में बात करें हमारा बेस्ट कॉलेज है इस टाइम,
1: जी
0: जो बच्चों माँ बाप के लिए बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए।
1: तो क्या कोई और बात, कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे?
0: बेसिकली हमारे पास जो है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम लोग अपने यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी हम कराते हैं यहाँ पे, जिससे बच्चों को एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या अदर जो एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं हमारे फील्ड की उन लोगों से मुलाकात करने के लिए। इसके साथ साथ जहाँ पे हमारे यहाँ नेशनल लेवल के और इवन जो हमारे यहाँ AIU हमारे यहाँ गेम्स हुए हैं
1: जी
0: उनको होस्ट करने का हमारी यूनिवर्सिटी को मौका मिलता है,
1: जी
0: तो उसमें हम बच्चों को पोस्टिंग लगाते हैं तो उनको उस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। ये चीज़ें कहीं और इतनी नहीं है। यहाँ पर रेयर सर्जरीज होती हैं हार्ट की या फिर हमारे बोन्स जॉइंट्स के प्लेसमेंट की, जो कहीं और इतनी बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलती हैं,
1: जी
0: तो इसीलिए वो बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये चीज़ें इसको यहाँ पे इनको इन चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा जो उनके आगे लाइफ में हेल्प करेगा।
1: जी
0: वो चाहे वो बच्चे अपने एकेडमिक फील्ड को चूज़ करें, या तो हमारे यहाँ पे PhD कोर्स भी है,
1: जी
0: PhD में ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर अपना एस्टेब्लिश क्लिनिक चला रहे हैं तो उसमें उनको बहुत हेल्प मिलेगी,
1: जी
0: या किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी यहां पर दी। दोस्तों चलिए यहीं पर हम विश्व भारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, यहां पर हम उनसे भी बात कर लेते हैं।
2: जय हिंद, मेरा नाम अदीना है, मैं ज्योति राव फूले विश्व भारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की इंटर्न हूँ। मैंने अपनी BPT 2021 में शुरू करी थी और यहाँ पर मेरे 4.5 साल बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। ज्योतिराव फूले विश्व भारती कॉलेज का फिजियोथेरेपी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है। यहाँ पर हमें एकेडमिक और प्रैक्टिकल लर्निंग दोनों ही दी जाती है। ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें फर्स्ट 4 ईयर्स हमें एकेडमिक लर्निंग्स दी जाती है, जिसमें थर्ड और फोर्थ ईयर में ही हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल में। हम इन पोस्टिंग्स के दौरान अपने इंटर्न्स, अपने सीनियर्स को देखकर सीखते हैं कि कैसे पेशेंट हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के दौरान हमें रियल पेशेंट एक्सपीरियंस दिया जाता है। रियल पेशेंट एक्सपीरियंस, रियल हैंड ऑन केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज के साथ एक 1100 बेडेड हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी में पोस्ट किया जाता है। यहाँ हमें दूसरे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर टीम में वर्क करना होता है, जिसमें हमें ऐसे काम करना होता है कि हमारे पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर दी जाए। यूजुअली जो मेरे अदर फ्रेंड्स हैं जिनसे जो BPT परस्यू कर रहे हैं, मैंने उन्हें सुना है कि उनको इंटर्नशिप के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, पर हमारे पास ये लिबर्टी है कि हमारा हॉस्पिटल साथ ही जुड़ा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है, जिससे हमें दूसरे दूसरे सारी फील्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करने का भी मौका मिला है, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी थी। रिसेंटली एक AIU कॉम्पिटिशन, शूटिंग कॉम्पिटिशन होस्ट हुआ था, उसमें मैंने एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सर्व किया है। दिस इज़ अ वेरी गुड चांस जो मुझे यहाँ मिला बिकॉज आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ज्योतिराव फूले विश्व भारती कॉलेज में बहुत ही अच्छा रहा है। ये मेरे लिए पर्सनली ग्रोइंग भी था और एकेडमिकली अकम्पलिशिंग भी था। मैं अपनी इस चॉइस से बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज चुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
3: जय हिंद। मेरा नाम जैदुर रहमान है, मैं एक BPT इंटर्न स्टूडेंट हूँ ज्योतिराव फूले विश्व भारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में। हमारा 4.5 ईयर्स का कोर्स है। मैं 2021 बैच से ज्योतिराव फूले विश्व भारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में हूँ। फिलहाल हमारी इंटर्नशिप चल रही है छत्रपति शिवाजी विश्व भारती हॉस्पिटल में, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड है, और हमें साथ ही मेडिकल कॉलेज का एक्सपोजर भी मिलता है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स साइमल्टेनियसली फिजियोथेरेपी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ मिलकर हमें ओवरऑल मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी स्टडीज़ कराते हैं। जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर्स हमें पढ़ाते हैं, और जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेसर्स हमें कराते हैं। फिजियोथेरेपी कोर्स स्टडी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। बेसिक टू एडवांस टेक्निक्स हमें सभी सिखाई जाती हैं एक वेल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हमें सुभारती यूनिवर्सिटी ने दिया है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अप्रॉक्स 1300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें ऑर्थो न्यूरो कार्डियो वार्ड्स अवेलेबल हैं और एक्सेट्रा। न्यू आईसीयूज में भी हमारी पोस्टिंग लगती है लाइक एमआईसीयू आरआईसीयू न्यूरो आईसीयू एंड सो ऑन। फिजियोथेरेपी को प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए ज्योतिराव फुले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में एकेडमिक एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फैसिलिटी बेस्ट प्रोवाइड कराता है। हमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल्स, वर्कशॉप्स रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी से बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रोवाइड्स कराई जाती हैं। हैंड ऑन प्रैक्टिस पेशेंट्स पर और साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोच किया जाता है। सारी फैकल्टी मेंबर्स हमारे क्लिनिकल हैंड्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं।
1: तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ज्योतिराव फुले सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के बच्चों ने जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर किया। सर चलते चलते मैं चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहेंगे जरा हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूवर्स को, आपका कोई संदेश कोई मैसेज।
0: मैं चलते चलते मैं ये बोलूंगा पेरेंट्स का और बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि वो ये अब ये बहुत ही अपकमिंग प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा या लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। आप लोग भी इस प्रोफेशन के बारे में जानें और अपना एक मन बनाएं कि हाँ हमें प्रोफेशन के रूप में फिजियोथेरेपी को एक चुनना है। इसके अंदर आप लोग अभी से प्रिपेयर करें बच्चों को कि वो नीट का एग्ज़ाम दें ताकि उनको एडमिशन आसानी से हो सके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। दोस्तों आपको ये जानकारी भरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर। जय हिंद, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: स्वागतम, मैं हूँ वास्तु कृष्ण और सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर आज हम बात करेंगे आप ही लोगों के बारे में। जैसा कि हमेशा इस जय जवान जय किसान कार्यक्रम में हम करते हैं, बहुत सारी फरमाइशें आ रही कई दिनों से मेरे पास कि हीर रांझा के किस्से की रागनियां सुनवाई जाए, तो आज मैं पिटारे से निकाल कर लाया हूँ हीर रांझा के किस्से। तो अगर आपको भी बहुत पसंद है, स्वागत करता हूँ आपका। हीर रांझा के किस्से से ये रागनी सुनते हैं, उसके बाद हम खेती किसानी की ढेर सारी बातें आपके साथ में जरूर करेंगे।

ऐसी ही सुपरहिट रागनिया मैं यहाँ पर आपके लिए चलाता हूँ। यह है आपका अपना जय जवान जय किसान, खेती किसानी की बातों में साथ ही साथ आपके लिए देसी गाने और रागनिया भी चलाता हूँ। और अगली जो रागनी चलेगी ये चलेगी सतपाल दोसा जी की आवाज में। आप भी फोन कर सकते हैं 9639012111 पर। यह है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपका पसंदीदा ये खास कार्यक्रम जिसमें दूर दराज से, गांव से, कस्बे से, देहात से हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई जुड़ते हैं। अगर आपको भी पुराने किस्से, पुरानी रागनियां या पुराने देसी गाने पसंद आते हैं तो मुझे बताइएगा जरूर आपकी पसंद की रागनी या देसी गाना मैं यहां पर जरूर चलाऊंगा। किसान भाई इस कार्यक्रम को काफी पसंद करते हैं और अपना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नंबर है 9639012111। इस नंबर पर आप भी अपनी पसंद की रागनी के लिए फरमाइश कर सकते हैं।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: आज के इस कलयुग की सच्चाई को इस गीत के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आया हूं और आशा करता हूं आप सुनेंगे और अमल करेंगे।

पहले श्रवण कुमार जैसे पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करवाते थे, और आज इस कलयुग के पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता को अपने साथ रखने में शर्म आती है।

जिस माँ ने रात रात भर जागकर और खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को अपने खून से सींचा, आज वही बच्चे उसे अपने साथ रखने में भी शर्माते हैं।

एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, लेकिन एक पिता ता उम्र उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने दिमाग में रखता है, और वही बच्चे उस पिता के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आइए सुनते हैं।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: मन भावन संगीत हमारे दादा रिसाल बजाएंगे, दादा रिसाल बजाएंगे कोशिंदर वैरिसी पाल।

शिविर में बैठे हुए शाम के वक्त वीरधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सेनापति बनेगा हमारी तरफ से मेहरबानों? फिर क्या था, करण के लिए कह दिया कि कल के युद्ध में करण को सेनापति बनाया जाएगा। मेहरबान।

0: फिर क्या था साथियों, करण आज सेनापति बन गए और करण के अरमान थे कि मैं रणभूमि में लड़ाई लड़ूं और वो भी अर्जुन के सामने। मेहरबानों, करण ने कहा कि अगर कृष्ण जैसा मुझे सारथी मिल गया तो मैं पांडवों के छक्के छुड़ा दूंगा और अवश्य महाभारत के मैदान में दुर्योधन हमारी विजय होगी। मेहरबानों, कैसे भला
1: समुंदर में किश्तियां डूब जाती हैं, बड़ी मुश्किल से वो उभर पाती हैं। पूछना हो तो पूछो कमें इन साहिलों से, निकली हुई घड़ी बड़ी मुश्किल से हाथ आती है।
0: लेकिन दुर्योधन, काश तेरी तस्वीर भी मेरे पास होती, फिर मैं तेरी यहां तलाश न करता। गर आते न तुम मेरी आवाज पर, सच कहता हूं कि मैं प्यास में न मरता और आज तेरी चाहत पूरी करूंगा। मैं करण का सारथी बनूंगा, लेकिन याद रखना कि करण अपनी जिद ना करने लगे, जिधर के लिए मैं सब को ले जाऊं, करण कहीं मेरी बेइज्जत ना कर दे। क्यों कि रिश्ते में मैं उसका मामा लगता हूं और मैं भी लड़ाकू जवान हूं, करण तो मुझसे कहीं कम जानता है। मेहरबानों, बना कैसे?
2: वास्तु कृष्ण के साथ
3: शुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

साथियों, दुर्योधन सोच रहा था, न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी क्या थी नजारों की। हमारे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े साहसी हैं, और अब तो करण सेनापति बन गया और मनमानी करण की हो गई, मन चाहे सारथी मिल गई। मामा सन मेरे मेहरबान, ये खबर जब पांडवों में पहुंची तो भगवान कृष्ण चकरा जाते हैं, रहस्य में घूमने लगे। क्यों? करण के पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण, वो ऐसी शक्ति थी कि जिनमें 5 पांडवों के प्राण थे। मेहरबानो, बस फिर तो श्री कृष्ण इस तरह से धर्मराज से कहने लगे,

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
3: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
4: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
5: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
6: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल, ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज, गर्ग रोड, मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
7: आज की मैं चूर हो

0: वास्तु कृष्ण के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: न्यू बोला रे एक बात तू बोल सकती।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ।
1: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: शुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: ये है मेरठ का नंबर वन शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
3: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
3: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
4: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: ऐसे ही सुपरहिट देसी गाने और रागने यहाँ पर चलती हैं। गांव देहात का हमारा ये देसी प्रोग्राम जय जवान जय किसान, जहाँ बात खेती की होती है और गांव में रहकर हम ज्यादा कैसे कमाए इस बारे में बातें होती हैं। आजकल आपके गांव में क्या चल रहा है मुझे ये भी बता सकते हैं 9639012111। और चौधरी विक्रम जी का हमारे पास फोन आया है पांचली गांव से और ये सुनना चाहते हैं बुढ़े बैल की एक रागनी। तो बुढ़े बैल वाली रागनी मैंने ढूंढी और मुझे मिल गई है सर, मैं जरूर चलाऊंगा। आप भी दोस्तों अगर पांचली में सुन रहे हैं, पांचली के अलावा किसी और गांव कस्बे देहात से सुन रहे, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सभी से यही बताना चाहता हूं कि ये आपका अपना प्रोग्राम है, देसी प्रोग्राम है। गांव की बात होती है, खेती की बात होती है, किसानी की बात होती है और बात होती है इस तरह की पुरानी पुरानी रागनियां।
1: एक रागनी आपके सामने के आज के समय में साइंस ने सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन लोगों हमने एक चीज घटा दी, कदर। और कदर भी ऐसी चीज की, एक बैल एक गौ का जाया, उसकी कदर नहीं है आज। और लोगों ये सच्चाई है, जिस दिन इसके कंधे ने सब छोड़ दिया, यह दुनिया टोई नहीं पाओगी। एक जमींदार के, एक किसान के, एक गौ माता ने एक बछड़ा दिया, वो बछड़ा 1.5 साल का होया, उसका नाथ गलवा दी, 2 साल का होया जुआ में ला दिया, और वो बैल जवान हो गया, सारी जवानी उसके खेत कमाया। लोगों वो बैल बूढ़ा हो गया और पाया तो लाचार, आख्या तो कम दिखे। और ये नई प्रयोग शायद नहीं जानती, वो बाहर तो व्यापारी आ करते और ये हमारे बूढ़े उन्हें मंडा साले कया करते। वो मंडा साले आगे आके गाड़ में रुका मारा कि भाई कोई बैल बेच लो। उस किसान ने वो व्यापारी बुलाए और कहा कि भाई इसका मोल पाछे करवावेंगे, पहले अपने बैल ने चला के देखा। लोगों जब उस बैल ने खोलन गया, खूटे का जोड़ा खोलन लग गया, बूढ़े बैल ने खोवे पर ठोडी टेक दी और एक आंसू उसकी आंख से टपक के उस किसान के हाथ पर पड़ा। ऊपर ने देखा लोगों, बूढ़ा बैल परड़ परड़ रोन लग रहा, उसके आंसुओं में एक दर्द था, एक प्रार्थना थी कि मेरे मालिक मेरे पराक्रम थक के देह में जान को न रही, इस मेरे साथ हमेशा व्यवहार मत करे। क्या प्रार्थना करता है, उसके आंसुओं का दर्द क्या कहता है, एक बात के द्वारा क्या बता रहा है।

जाडे माह जोड़ा और चाहे तेरी जेठ की दुफारी में सूत बैठा तेरी गेल जाडे में ठिरा करता और तेरी गेल गाम में जड़ा करता और तेरे

कमाया कमाया हूँ, कभी कुछ मांगा नहीं। आज मरते समय मेरा जज की के मेरी अंत समय नजदीक है, आपसे एक भीख मांगता हूँ। जब आपने मेरे को भीख दे दी तो मेरी तो मुक्ति है ही है, हो सकता है आपका भी स्वर्ग में साझा होगा। मरते समय उस बूढ़े बैल ने अपने मालिक से क्या भीख मांगी।

दोस्तों, पुराने समय में किसान का सबसे बड़ा साथी हुआ करता था बैल। जब खेत पर बैल से जुताई की जाती थी, खेत में बुवाई की जाती थी और घर से भोजन आता था, एक किसान का खाना आया करता था, तो पहले दो रोटी एक रोटी वो अपने बैल को जरूर खिलाते थे। किसान और बैल की दोस्ती मशहूर हुआ करती थी। बचपन में हमने भी अपनी किताब में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें किसान और बैल की दोस्ती के बारे में बताया गया था। तो वो पुराने दौर थे, आजकल ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। वो गन्ने की बुवाई, खेत की जुताई बैल के जोड़े के साथ की जाती थी। पढ़ी आपने बचपन में वो किस्सा कहानी, हीरा और मोती दो बैल थे। अब बैल ही नहीं देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, लेकिन ये सच है कि जैसा कि अभी इस रागनी में आपने सुना कि बूढ़े बैल जब हो जाया करते थे तो किसान उनको बेचते भी नहीं थे। वो कहते थे कि इस बैल ने पूरी जिंदगी मेरी सेवा की है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। आजकल ऐसा होता ना कि जैसे ही भैंस गाय या बैल बूढ़ा हो जाता है तो किसी काम का नहीं होता तो उसको बेच देते हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, सच्ची दोस्ती हुआ करती थी।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
2: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
3: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
5: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
6: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
7: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
8: नो पेन, नो स्कार, नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
7: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
9: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
10: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
9: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
10: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
11: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS, MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
6: For consultancy, you may visit Nutima Hospital, opposite LLRM Medical College, Garh Road, Meerut. You may contact 9837056192.
12: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM.

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: अरे बहन कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
3: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
3: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
4: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
5: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गर्ग रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: तुम्हारे बाल तो यार बड़े अच्छे हैं और हेयर स्टाइल तो कमाल का है। ऐसी कुछ लाइंस वो लोग कभी नहीं सुन पाते जिनके सिर पर बाल कम होते हैं या होते ही नहीं है।
1: मगर अब ऐसे लोग भी सुनेंगे अपने बालों की तारीफ डाविंसी क्लिनिक में आकर, जो कि है स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह करेंगे आपके बालों का ट्रीटमेंट, जो कि है प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ।
2: नो पेन नो स्कार नो स्टिचेस, वर्ल्ड क्लास टेक्निक, नेचुरल एंड परमानेंट रिजल्ट्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, सेटिस्फाइड पेशेंट्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। डाविंसी क्लिनिक,
1: कॉन्टेक्ट नंबर 7055200128, एड्रेस 36 BSNL ऑफिस के सामने, तेजगढ़ी क्रॉसिंग, गढ़ रोड, मेरठ।
3: अरे बहन, कहाँ खोई हो और बहुत कमजोर भी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या?
4: क्या बताऊँ बहन, तबीयत बहुत खराब रहती है। ऊपर से डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे दानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे तो तुम्हें तो डॉक्टर प्रियंका गर्ग से मिलना चाहिए।
5: अच्छा, डॉक्टर प्रियंका गर्ग, उत्तर प्रदेश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गर्ग, जो कि दूरबीन विधि से बच्चे दानी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करने वाली मेरठ की पहली महिला डॉक्टर हैं। और तुम्हें पता है, इन्हें 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है।
6: डॉक्टर प्रियंका गर्ग, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, पीकॉक डिप्लोमा इन गायनो एंडोस्कोपी केल जर्मनी, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, अपने 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आपके लिए मेरठ में।
1: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यू टीमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गढ़ रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
7: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
1: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
2: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
3: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Να μέρει λελίχτε, να τουνιά και λελίχτε, να μέρει λελίχτε, χάλι ψεντά χωτέ, το τέρι λελίχτε, χάλι ψεντά χωτέ, το τέρι λελίχτε.
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वेलकम है आपका। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। और जी आपसे बातें करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो ही चुका हूँ और रहने वाला हूँ उसी टाइम तक जिस टाइम तक हर बार आता हूँ और रहता हूँ। वैसे जब मैं आता हूँ यहाँ पर तो बातें भी कुछ अलग होती हैं पिछली बार के मुताबिक और गाने भी कुछ अलग होते हैं पिछली बार के मुताबिक। वैसे आज क्या कुछ खास बातें आपसे होने वाली हैं, क्या कुछ खास गाने आप यहाँ पर सुनने वाले हैं, ये सभी कुछ आपको पता चलता ही रहेगा धीरे धीरे। आपसे हम यही कहेंगे कि जाइए कहीं मत, बस ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपने कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और चलिए अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है हर चीज की अहमियत वक्त के चलते बदलती रहती है और उसका बदलाव हमारे वजूद के हिसाब से तय होता है। सीधा सा, सिंपल सा और समझने वाला मतलब है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है, लेकिन एक टाइम पर उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको लगता है कि ये अब जरूरी है हमारे लिए, अब हमारे पास ये होना चाहिए, लेकिन उस टाइम आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब अफोर्ड करने की आपकी क्षमता होती है, तब आपको लगता है ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। तो हर चीज की अपने समय के साथ कीमत बदलती रहती है, अहमियत बदलती रहती है। तो बस समय के साथ ढलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। बाकी आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
1: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
2: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।
3: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH 58 सुभारतीपुरम, मेरठ में।
2: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और फिलहाल अगला सॉन्ग हम सुनने जा रहे हैं बरसात, हिमेश रेशमिया की वॉइस में। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: अरे अंकल सुनिए जरा।
1: हाँ बेटा बोलो।
0: अंकल जी वो पापा की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और आपने भी तो अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो हमें भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दीजिए।
2: बेटा तुम अपने पापा को लेकर डॉक्टर प्रियांक गर्ग के पास जाओ, जो मेरठ के नंबर वन आँखों के डॉक्टर हैं, और मैंने भी अपनी आँखों का इलाज उन्हीं से कराया था।
3: डॉक्टर प्रियांक गर्ग MBBS MS ऑप्थल्मोलॉजी FNB VR सर्जन FICO लंदन FAICO FBRS PDCR रेटिना सर्जन MM ROP स्पेशलिस्ट
4: विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो करते हैं रेटिना की सभी बीमारियों का इलाज। नवजात शिशु के रेटिना की जांच, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, और साथ ही में लेसिक लेजर द्वारा चश्मा हटवाएं।
3: फॉर कंसल्टेंसी यू मे विजिट न्यूटिमा हॉस्पिटल ऑपोजिट LLRM मेडिकल कॉलेज गढ़ रोड मेरठ। यू मे कॉन्टेक्ट 9837056192।
5: डॉक्टर प्रियांक गर्ग न्यूट्रिमा आई केयर, आओ अच्छा देखें।
6: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, विच इज माई ड्रीम कंपनी। आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट, ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया। ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। अच्छा भाई, वैसे तो हमें समझाने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा यही समझाते हैं कि भाई पुरानी बातों को छोड़ो, जो हो गया वो भी ठीक है और जो होगा वो भी ठीक है। अपने तरीके से वो हमें समझाते हैं और बस यही कहते हैं आखिर में कि भाई आगे बढ़ो, भूल जाओ उस समय को। क्या वो तुम्हारा समय था? आज के बारे में सोचो कि अब क्या करना है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो रात में सोते वक्त अपने पुराने समय के बारे में ही सोचते रहते हैं। इतना सब कुछ लोग समझाते हैं उसके बावजूद भी कितने परसेंट है बताता हूं आपको। तकरीबन ये भारत की ही नहीं, दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, दुनिया के 79% लोग रात में सोते वक्त अपने पुराने समय के बारे में ही सोचते रहते हैं। क्या वो वक्त था, क्या वो समय था, तब हम ये थे, आज हम ये हैं। आप वैसे इसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं बताइए मुझे थोड़ा सा। देखिए, मुझे आपसे बातें करने का चाहिए बहाना और अभी मेरे पास ये बहाना है, इसी बहाने आपसे हमारी बातें हो जाएंगी भाई। तो बताइए आप क्या विचार रखते हैं अपने इस बात पर, हमारे सोशल हैंडल्स पर जाइए और बताइए या कॉल मैसेज कर लीजिए हमें 9639012111 पर।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रही हैं और मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और सबसे पहले तो भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भाई ये तालियां थी हमारे उन श्रोताओं के लिए जो अभी मुझे सुन रहे हैं और उन्होंने जो बात अभी पहले चल रही थी मेरे शो में उस पर रिस्पांस किया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हैं बीशु जो कह रहे हैं कि सर आपने बात की है कि रात के टाइम में सोते वक्त 79% लोग अपने पुराने समय के बारे में सोचते हैं, तो मैं भी उन 79% लोगों में से हूं। मैं रात के टाइम सोचता हूं अपने स्कूल टाइम के बारे में। अब मैं कॉलेज में हूं, स्कूल में क्या होता था कि दोपहर तक अपना स्कूल होता था, उसके बाद ट्यूशन वगैरह जाते थे और आराम से एंजॉय भी करते थे शाम के टाइम में दोस्तों के साथ। अब कॉलेज में हूं और दोस्तों को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूं, खुद भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता हूं। लेकिन भाई बीशु आपसे मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा समय निकाला कीजिए और बाहर जाया कीजिए, दोस्तों के साथ भी रहा कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए। चलिए ये तो थे बीशु। इसी के साथ ही साथ आगे मुझे मैसेज करते हैं चिन्मय जो कह रही हैं कि सर मैं सोचता हूं अपने पुराने समय के बारे में, लेकिन इतना नहीं। पुराने समय के बारे में मैं इसलिए सोचता हूं कि कभी मैं साइकिल से चला करता था और आज मेरे पास बाइक भी है, कार भी है। बहुत अच्छी बात है चिन्मय। अपना देखिए ये समय भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी हमारे पास भी साइकिल हुआ करती थी और आज हम बाइक से चल रहे हैं, आज हम कार से चल रहे हैं। इसके बाद पूजा है जो कह रही है कि सर मैं पुराने समय के बारे में तो नहीं सोचती हूं, मैं सोचती हूं कि कल क्या बना था और मुझे आने वाले कल में क्या बनाना है सुबह के टाइम, और क्या मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, क्या मुझे अपने हस्बैंड को खिलाना है। बिल्कुल पूजा जी आपकी बात मैं समझ पा रहा हूं, और गृहिणियों का देखिए यही होता है कि उनकी ऐसे समझ लो आप ड्यूटी चलती रहती है और इसकी वो सैलरी भी नहीं लेती बिल्कुल, और छुट्टी भी नहीं होती है, नॉन स्टॉप उन्हें काम करना है, हर दिन कुछ ना कुछ बनाना है, घर का काम देखना है, कपड़े साफ करने हैं। तो सैल्यूट बनता है एक आपके लिए जितनी भी गृहिणियां इस वक्त अगर मुझे सुन रही हैं तो। बाकी इसके बाद मुझे मैसेज करते हैं सुजल जो कह रही हैं कि सर मैं पुराने समय के बारे में तो नहीं सोचता, तो मैं सोचता हूं आने वाले कल के बारे में। जहां तक सोचने वाली बात है उस पर मेरा आपसे यही कहना है कि इतना भी सोचने मत लग जाइएगा कि कहीं आपकी हेल्थ इफेक्ट करने लग जाए। तो सोचिए लेकिन इतना भी नहीं कि हेल्थ खराब हो जाए, हेल्दी रहिए और खाते रहिए अच्छा अच्छा, और बस जो करना है वो करते रहिए। और फिलहाल सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।
1: तेरी याद आती है रात भर, तेरा असर इस कदर है कि फिरता हूँ दर बदर।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
2: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और अभी यहां पर अपने स्टूडियो में बैठा हूं आपसे बातें कर रहा हूं। चलिए अभी आपसे कर लिया जाए एक फिल्मी क्विज, और फिल्मी क्विज होने वाला है काफी ज्यादा आसान, मगर होगी इसमें एक कंडीशन। क्या कंडीशन वो होगी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फिल्मी क्विज। देखिए, आपको मुझे बताना है बॉलीवुड मूवी तारा रंपम में रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का क्या नाम होता है। इतना सा बस आपको मुझे बताना है। अब कंडीशन ये है कि आपको जवाब देना होगा सबसे पहले और करेक्ट, वो भी हमारे सोशल हैंडल्स पर जाकर, जो कि होते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के नाम से। कंडीशन दोबारा बता देता हूं, जवाब सबसे पहले देना है और करेक्ट भी आपका जवाब होना चाहिए। और इसी के साथ ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, आपको जवाब देना है हमारे सोशल हैंडल्स पर जाकर। बाकी आपका जवाब अगर मेरे पास सबसे पहले आता है और करेक्ट आता है कंडीशन को पूरा करते हुए, तो आपको मिलेगा हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। सो बिना देर किए जल्दी से आप मुझे अपना जवाब लिखकर भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करने वाला हूं अपकमिंग गाने के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज, और अभी यहां अपने स्टूडियो में बैठा हूं, एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा हूं। और जी थोड़े टाइम पहले अभी आपसे मैंने किया था हमारा आज का फिल्मी क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था बॉलीवुड मूवी तारा रंपम में रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का क्या नाम होता है। इतना सबस आपको मुझे बताना था। सो इसके अभी हमारे पास कई सारे जवाब आए हुए हैं, लेकिन अब हम अपनी कंडीशन के मुताबिक चेक करते हैं कि किसका जवाब सबसे पहले आया है और करेक्ट आया है, वो भी हमारे सोशल हैंडल्स पर। तो ये जवाब हमें मिलता है सांभवी का, जो बता रही हैं कि सर तारा रंपम मूवी में रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का नाम होता है राधिका। बिल्कुल सांभवी, आपका जवाब सही है जैसा कि हमने बताया, और आपने जवाब हमें सबसे पहले भी भेजा है, इसलिए आपको मिल रहा है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB LLM LLM एग्जीक्यूटिव PG डिप्लोमा PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम UG कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है, उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है, PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स लेबर लॉ पेटेंट IPR इन विषयों पे कराते हैं, इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं पेटेंट हैं उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं UG के भी और PG के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा PG डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है, LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है, ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
0: मैम आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी?
1: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है, उसमें एक क्राइटेरिया बना है 9200 पे आपका UG अगर आप करना चाहते हैं BA LLB करना चाहते हैं तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप 9200% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 9200 और 80.9% तो वहाँ पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सोनल के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर्स हैं उनके डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
0: मैम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
1: पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं और फ्री लीगल एजुकेशन वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है वो हमारे यहाँ आकर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
0: मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
1: पंकज जी विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BA LLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधि जो एक्सपर्ट्स हैं लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बीएलएलबी के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, आजकल फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा बीएलएलबी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, एलएलएम करता है, तो एलएलएम करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो यूजीसी नेट क्लियर कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च को ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एलएलएम फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और स्पिरिट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
0: मैं वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
1: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर एस्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
0: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और पीजी आपको करना है तो आपको क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं बीएलबी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में, पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगा दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के चार क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
3: जय हिंद, मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्थ वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाए, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। न केवल मैं, मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को ना केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ना केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर देश और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं, अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र की इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
0: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
1: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पर बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दिस वर्ड, जय हिंद जय भारत।
0: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद जय भारत।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गर्ग SM हॉस्पिटल से। कुछ लोग हमें फोन करके ये जानकारी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा दुविधा है मन में कि IVF से बच्चा हमारा अपना ही खून होगा कि नहीं होगा। ये अपने मन से आप ये शंका हटा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो आपके अपने ही गैमेट्स को यूज किया जाता है।
1: अब आपके आंगन में भी गूंजेगी बच्चों की गिलकारियां। संपर्क कीजिए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, कट रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट 8650554433।
2: निसंतानता से पूरी तरह से छुटकारा, आइए ब्लेस्ड फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, SM हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका गर्ग जी के पास।

जिंदगी के बाद भी किसी की आंखों की रोशनी या धड़कन बनिए। आपका ये एक फैसला किसी एक की तो जिंदगी बेहतर बना ही सकता है। अंगदान महादान। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूं और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहां बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो हैं वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण कर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारी फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशन हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशन हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें संगठित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है, हमें AICT ने अप्रूवल दिया है, और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्ड है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक इनोवेशन इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है उसके अंदर बच्चे जाके टीचर्स जाके जो काम करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
0: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है, मैं कहूंगा कि अनपैरेलल मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में है फैकल्टीज का वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो PhD होल्डर्स हैं और IIT से ग्रेजुएट हैं, NIT से ग्रेजुएट हैं, वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली, नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था, पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था, वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है, हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में MOUs किए हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। ह्यूस्टन टिलोटसन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है, उनके साथ में भी कुछ MOUs किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं, नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
0: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या AI की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना, अब मिलना शुरू हुई है, तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें। नहीं तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है वो YouTube पे नहीं चल सकता। YouTube पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही कैंपस में ही मिल सकती है, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
0: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें AI को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
1: AI से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि AI जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी, लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए AI के ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो AI नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने AI की भी हेल्प ली हुई है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी? तो AI सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि AI जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, AI उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है, तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
0: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है, वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है सुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव AI को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आ जाता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में IoT की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
0: सर, अब बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवाकर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलैबोरेशंस करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में एक दो साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
0: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में।
1: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाएं। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए, अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
1: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे, और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए कि अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और एकदम लाइव आपसे मेरी यहां पर बातें शाते हो रही हैं। अभी यहां पर अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, हमारी बात यहां पर आपसे होती रहती है, लेकिन शो से पहले या शो के बाद अगर आप हमसे बात करना चाहें तो कैसे करें, है ना? ये आप सोचते होंगे और सोचने वाली बात भी है कि भाई कोई बात मिस हो गई आपसे पूछनी या बतानी तो कैसे बताएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, ठीक है? वहां पर आपको जाना है, सर्च करना है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आप हमें फेसबुक यानी कि मेटा पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां हमारा आपको पेज मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। दोनों जगह पर जाकर आप हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसा करने से आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर बात भी कर पाएंगे। तो कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए, बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा जुनून है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही मेरा सुकून है।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now, 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, विच इज माई ड्रीम कंपनी। आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट, ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया। ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना।

0: और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
1: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए. और आप भी आइए केरल उर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए. आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं. बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी. चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे.
2: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी.

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी।

शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एसपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: Chernexus.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी,
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बोर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913, और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhatidefense.com।

साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी

0: स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।